0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: नॉटी होने का बेस्ट पार्ट पता है कौन सा होता है? राइट बिफोर गेटिंग नॉटी विद समवन, तुम पहली बार उस बंदे को किस करने वाले हो, तुम्हें पता है कि ये किस होने ही वाली है, तुम्हें पता है कि ये इनएविटेबल है, लेकिन वो बंदा और तुम उसके घर हैंग कर रहे हो और ड्रामा कर रहे हो कि आज कुछ नहीं होगा, बस देख ही तो रहे हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल, लेकिन अभी तक चिल वाली स्टेज आई नहीं है. फिर क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल के बारे में लड़ाई होती है. आई वांट वॉच दिस यार, एंड देन ही इज लाइक आई वांट वॉच दैट यार, और एक दूसरे के हाथ से रिमोट छीनते छीनते कैसे तुम्हारे फेसेस पास आ जाते हैं. ओ माई गॉड, रिमोट कंट्रोल हैज बीन रिप्लेस्ड बाई ईच अदर्स लिप्स. ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, एक्चुअली ये मेरी स्टोरी है भी नहीं, ये मेरी बेस्टी की स्टोरी है जिसका नाम मैं लूंगी नहीं, क्योंकि फिर आप उसे ट्रोल करोगे और बोलोगे और बता, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड विद हर. बट द पॉइंट इज, अगर आपकी भी जिंदगी में पहली किस ऐसे ही हुई थी फाइटिंग ओवर रिमोट कंट्रोल, या आपका कंगन खो गया था एंड देन ही हैड द कंगन एंड ही सेड और पास और पास और पास एंड देन यू किस्ड, आई कैन डाई फॉर स्टफ लाइक दिस. टेल मी योर स्टोरी, मुझे मरने से बचा लो. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई किस्ड समबडी. ऑन दैट सैड नोट, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
3: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
4: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग. राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
7: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा.
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: मिर्ची न्यू जर्सी, इट्स हॉट।
1: लोग बेडरूम में नॉटी होने के लिए न्यूटेला या मोल्टन चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका किंक है चटनी इस्तेमाल करना। Look, you know what? Gross as it is, it doesn't matter. जो भी आपकी confession है, this is a place to talk about it. मेरा नाम है मिर्ची, रोशी नाम की spelling है. I can't even get over the चटनी bit. R-O-C-H-I-E है spelling. Find me on the gram या Facebook. We'll get talking and for right now, मेरे साथ है मेरे mystery caller. Hello, naughty boy.
2: Hi, Roshi. कैसे हैं आप?
1: यार, मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप इतने cute sound करते हो ना, भोले से. और आपकी जो मैंने photos देखी हैं in your Insta profile, you are so hot, यार.
2: थैंक यू रोशी, मींस अ लॉट.
1: क्यूटी पाई. अच्छा, आपने जो मुझे अपना कन्फेशन लेके भेजा था इंस्टाग्राम पर, उसे देखकर मैं काफी हैरान हुई थी. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, फुल डिस्क्लोजर, मैं थोड़ा सा हंसी भी थी. तो एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदाते रात को?
2: सो रोशी, आई वॉज इन योर इंस्टाग्राम लाइव. तब वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपके मैसेजेस, आपके उस पे कॉमेंट कर रही थी. तो फिर हम दोनों की, मैंने सोचा कि चलो इनसे बात करता हूँ, बिकॉज उनकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी. हम धीरे धीरे बात करने लगे. फिर एक दिन शी टोल्ड मी कि चलो मिलते हैं सेम जगह. तो हम गए वहाँ, मिले एंड हमने डिनर किया. फिर मैंने सोचा कि उन्हें घर छोड़ देता हूँ. और रोशी, जब हम कार में बैठे तो मतलब आई एम लाइक दैट पर्सन की यार अभी कुछ एकदम से स्टार्टिंग है रिलेशनशिप का, या मैंने तो अभी प्रपोज भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे किस कर दिया अचानक से. मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया. मैं डर गया कि मतलब यार ये क्या हो गया, कि करा उन्होंने स्टार्ट था बट ये गलत ना समझ जाए, ये क्या हो रहा है ऐसे. तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या करूं. देन रूसी थोड़ी सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई, थोड़ा और पास आया. और फिर मतलब वो कैसे मैं बताऊं आपको, फिर उन्होंने पैंट के अंदर हाथ डाल दिया. तो मैं तो रोशी डर गया, बिकॉज मैं ममाज बॉय हूँ. मैं अगर मम्मी को बता के भी आता हूँ कि यार मम्मी मैं डेट पे जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया, फिर मम्मी को क्या बोलूंगा ऐसा ऐसा कुछ हुआ. और मुझे शादी के बाद ही करनी थी ये चीजें, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था. मतलब मुझे मना भी करना था, मैंने कहा यार रूठ भी नहीं हो सकता, बंदी भी अच्छी है. बहुत ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए.
1: मैं तो आपसे जानना भी नहीं चाहती हूँ कि अल्टीमेटली फिर सब कुछ हो गया कि अभी कुछ कुछ बाकी है. अब तो मैंने
2: रोशी, उसके बाद मैंने फिर बहाना करा कि मम्मी की कॉल आ रही है, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में. तो मैंने कहा नहीं नहीं यहीं से साइड में पापा को उठाना है, तो आप प्लीज रिक्शा में चली जाओ.
1: भाई मैंने इनफ नमूनों से बात कर ली ऑलरेडी, लेकिन आप जैसा तो कोई भी नहीं है. मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ जिसमें आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिस्ट्री कॉलर.
2: प्लीज.
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: ओह गॉड, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू मिस्ट्री कॉलर. I just hope that I don't have the privilege of seeing you in person, क्योंकि शायद मैं आपसे बात करते करते उस लड़की की तरह टेम्प्ट हो जाऊं. ठीक है आप अगर मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह आप भी निहायत ही शर्मीले किस्म के इंसान हो, देन आई थिंक वी शुड टोटली टॉक जस्ट फॉर अ लार्क. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. सो हिट मी ऑन इंस्टाग्राम या FB, बट व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
0: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
3: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
2: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
3: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
4: No!
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
5: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची का।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची न्यू जर्सी, इट्स हॉट।
1: रोशी थ्योरी नंबर 642 के लिए तैयार हो जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं तो सामने वाला इंसान क्या दौड़ लगाता है, एंड देयर लाइक लुकिंग एट अस एंड सेइंग कि हाँ सोचेंगे करेंगे, और हमें ये लग रहा है कि भाई यही बंदा है, इसी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। एंड देन एक दिन 480 दिनों के बाद यू वेक अप एंड रियलाइज कि हाँ ठीक है यार, इसके पीछे भागना बंद कर देते हैं। कट टू, जैसे ही आप भागना बंद करते हो वही इंसान आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। एंड देन यू आर लाइक, एक सेकंड, जब मैं जिंदगी के 4 साल तेरे पीछे भाग रही थी तब तुझे मेरी वर्थ नहीं समझ में आई, और अब जब मैंने तुझे देना बंद कर दिया है, सडनली यू रियलाइज दैट आई एम द इट गर्ल। ऐसा होता है, ये मुझे पता है, ऐसा क्यों होता है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और अगर आप भी ऐसे ही चेजिंग एंड एक्टिंग के शिकार हो, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप, वी विल कंपेयर नोट्स। और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: मिर्ची रोशी रोशी मिर्ची रोशी
0: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी. इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I never thought about it this way, yaar, but I suddenly saw like this Instagram ka ek bahut hi cute reel. Us pe likha tha ki अल्टीमेटली इट्स अबाउट आप किस इंसान को सबसे पहले टेक्स्ट करते हो व्हेन यू लैंड एट द एयरपोर्ट. और मैं सोचने लगी कि ये सच है. जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड करती हूँ और अपना फ़ोन स्विच ऑन करती हूँ, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन दैट आई टेक्स्ट. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेरी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है. जैसे ही मैं लैंड करती हूँ आई एम लाइक मैं पहुंच गई हूँ, मुझे भूख लग रही है, कितनी गंदी राइड थी ये, इससे बेटर तो मैं एक ट्रेन ले लेती. ये सब बकवास. फ्लाइट आफ्टर फ्लाइट आफ्टर फ्लाइट मैं अपने बेस्टी के साथ करती हूँ. अनबिलीवेबल. आप मुझे बताओ, जब आप लैंड करते हो तो हु इज द फर्स्ट पर्सन दैट यू टेक्स्ट? हाँ, एंड टू टेल मी अबाउट दैट यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. टेक्स्ट मी फर्स्ट ना प्लीज. एंड ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: 2006 हो, 2016 हो या 2026 हो, ये जालिम जमाना आपके रिलेशनशिप के बीच में आता क्यों रहता है? और अगर ऐसा हो रहा है, why don't you hit me up? हो सकता है, two is better than one and we might come up with a solution for your relationship hazard. So why don't you do this one very cool thing?
2: Why don't you hit me up Insta पर या FB पर? मेरा नाम है मिर्ची रोशी, I'm the specialist जो इस जालिम जमाने को मक्खी की तरह आउट ऑफ योर चाय निकालकर साइड पे करने की कोशिश कर सकती है. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. And while you do that, मेरे साथ लाइन पर गीत है. हेलो,
3: हाय गीत, what's up?
4: All good.
3: All good, huh? Is there a story you want to tell me which is like a super cute story?
4: Yes, ma'am.
3: First things first, aap karte kya ho?
4: Abhi to main, mera college complete hua hai aur abhi main teaching kar rahi hu.
3: Oh, wow. That is so cute. Aapki love story kya hai? Haan, dil toota hua hai, juda hua hai. Is there a love story? Is there a breakup story? What is the story?
4: अभी तो लव स्टोरी शुरू होते साथ ही खत्म होने वाला ऐसा लग रहा है.
3: क्यों?
4: क्योंकि मम्मी ने मतलब हमें ऐसे थोड़ा पकड़ लिया था.
3: थोड़ा कैसे पकड़ लिया था भाई? या तो पूरा पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं. थोड़ा कैसे पकड़ते हैं?
4: हाँ.
3: अच्छा, तो हुआ क्या? टेल मी द स्टोरी.
4: हाँ, ये मेरे घर के पास रहता है.
3: ठीक है.
4: अब क्या हुआ कि हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं.
3: हाँ.
4: अब ये एक दो सालों में ना इसने बोला मुझे कि मैं तो तुमको पसंद करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको लाइक कर दी थी.
3: हाँ.
4: अब उस बंदे का सामने से आया है.
3: हाँ.
4: बोली चलो ठीक है, बातचीत करके देखते हैं.
3: हाँ.
4: अब इसने ना मुझे एक बार घर बुलाया, मतलब ऐसे ही.
3: हाँ.
4: कैजुअल मीटिंग के लिए.
3: हाँ.
4: तो फिर ऐसे हम लोग मिले मिले फिर.
3: हाँ.
4: अच्छा, सेकंड टाइम बोला कि अब आना करके.
3: हाँ.
4: हमने हग वगैरह किया.
3: हाँ.
4: उसके बाद में फिर उसकी मम्मी मतलब आ गई उसकी बहन के साथ में.
3: हाँ.
4: तो फिर हमको देख के गलत समझी, मतलब ऐसे देखिए नहीं कि हम कुछ कर रहे थे, बस बोली कि डोर क्यों लॉक था करके. तो मैंने तो नॉर्मल ऐसा बोला कि नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं था करके.
3: हाँ.
4: मेरे को आंटी देखी हंसी थोड़ा सा. उसके बाद में फिर बंदे को बहुत सुनाई जब मैं चले गई घर की, तो ये सब करता है ये वो.
3: हाँ.
4: तो आप बताओ कि सर मैं क्या कर सकती हूँ?
3: अब आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो आंटी को लग रहा है. अब ये आंटी की प्रॉब्लम है, आप आंटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो? बट व्हाट इज योर क्वेश्चन कि इस बंदे का क्या करना है या बंदे की मम्मी का क्या करना है?
4: हाँ, मतलब बंदे की मम्मी का क्या करना, मतलब मैं जाके सॉर्ट करने की कोशिश करूँ?
3: आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली, बिकॉज आपकी जगह नहीं है वो. आप तो, आपका कनेक्शन बंदे के साथ है, करेक्ट? बंदे का कनेक्शन उसकी मम्मी के साथ है. तो बंदा और आप अपनी जिंदगी देखो कि आगे क्या करना है, हक करना है, दरवाजा लॉक करना है या नहीं. दैट इज अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक. लेकिन एज फार एज द गाय इज कंसर्न्ड, उसकी मम्मी को समझाना या उसकी मम्मी को क्लैरिफिकेशन देना वो उसका काम है. टिल ही आस्क्स यू स्पेसिफिकली कि भाई मेरी मदद कर दे, आई एम रियली कंफ्यूज्ड, या मम्मी बात नहीं सुन रही है, आई नीड यू टू टेल मम्मी कि उस दिन क्या हुआ सच सच, जो भी. जब तक वो आपसे नहीं कहता है कि हाँ मेरी मदद कर दे इसे रिजॉल्व करने में, आपको ज़रूरत नहीं है उसके रिलेशनशिप विद हिज मॉम में पढ़ने की.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए, लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।

0: इट्सी न्यू जर्सी, इट्स हॉट।
1: अगर कभी मैं जिंदगी में भगवान के साथ एक कॉफी डेट पर हूँ ना और वो मुझसे फीडबैक मांगे ह्यूमैनिटी के बारे में, आई वुड टेल हिम कि जब आदमियों को, स्पेशली द इनसेंसिटिव वंस को, आप इस धरती पर भेजते हैं तो कृपया करके उन पर एक मार्क लगा दे, जैसे सर पर एक मोटा सा तिल या एक तीसरी आंख बिल्कुल चीक के बीच में, ताकि औरतों को समझ में आ जाए कि ये बंदा इनसेंसिटिव है और इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स और मेरी मम्मी की तबियत आजकल ठीक नहीं है, वो ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हर एंड स्टफ। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी एंड आई थिंक आई गॉट वेरी इमोशनल। तो मैं इमोशनल हो रही हूँ कि डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा मम्मी को क्या हुआ, ये वो। मुझे कह रहा है बंदा, आर यू श्योर तू PMS नहीं कर रही है? एंड आई वॉज लाइक, अभी पता है एक चीज है दैट आई एम श्योर ऑफ, कि अगर मेरे हाथ में एक चाकू होता तो तेरी नस में स्लो मोशन में काटती। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दैट इफ यू आर एन इनसेंसिटिव पर्सन, अपने ओपिनियन को ना थोड़ी देर के लिए दबा कर रखना, स्पेशली अगर अ वुमन इज शेयरिंग वेरी डीप फीलिंग्स विद यू, क्योंकि हम तुम्हें ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हें बताते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है। और जब तुम ऐसे बकवास करते हो ना, हमारा मन करता है सारी ह्यूमैनिटी में से मेल्स माइनस हो जाएं। अगर आपको भी अपने बेस्ट फ्रेंड पर बहुत गुस्सा आ रहा है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, वी विल कंपेयर नोट्स। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: मिर्ची रोशी
0: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी. इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जैसे स्कूल में प्री बोर्ड्स होते हैं ना, बोर्ड से बिल्कुल पहले टू फिगर आउट कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो अपने एक्चुअल बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वैसे ही डेटिंग और रिलेशनशिप यूनिवर्स में देयर इज एक्चुअली समथिंग कॉल्ड प्री डेटिंग. तो प्री डेटिंग का मतलब ये होता है, और मेरी बेस्टी ने मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया है क्योंकि वो खुद एक प्री डेट पर गई थी. उसके ऑफिस में एक कॉलीग है, ये दोनों बहुत क्लोज हैं एंड देयर रियली गुड फ्रेंड्स. पिछले 6-7 महीने में देव बिकम वेरी गुड, एक्चुअली काफी थिक फ्रेंड्स, लेकिन ऑफिस के बाहर ये कभी नहीं मिले. तो शी सेड कि मैंने उसे बोला कि चल हैंग आउट करते हैं एक दिन, लेट्स गेट सम कॉफी एंड अर्ली डिनर. तो शी सेड मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दिस इज अ प्री डेट. आई वॉज लाइक उसका मतलब क्या होता है, एंड शी इज लाइक आई वॉन्ट टू फिगर आउट कि जब हम इस डेट पर जाएंगे कोट एंड कोट हमारी वाइब क्या है, इफ वी एंड अप वाइबिंग लाइक अ प्रॉपर कपल तब हम इसे एक चांस दे सकते हैं और एक्चुअल डेट पर जा सकते हैं. अगर हमें ऐसा लगेगा कि यार हाँ ठीक है हैंग आउट कर रहे थे बट काफी दोस्त वाली वाइब आई एंड हाँ ठीक

के ऑफिस में चिल करना इज बेटर देन हम डेट नहीं करेंगे, डेट पर नहीं जाएंगे. तो ये प्री डेट इज अ टेस्टर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. एंड आई वाज लाइक एज इफ डेटिंग वाज नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू स्टार्ट विद. आपने भी कभी ये प्री डेट वाला पैंतरा ट्राई किया है अपने रिलेशनशिप में? अगर हाँ देन

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: लोग बेडरूम में नॉटी होने के लिए न्यूटेला या मोल्टन चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका किंक है चटनी इस्तेमाल करना. Look, you know what? Gross as it is, it doesn't matter. जो भी आपकी confession है, this is a place to talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है. I can't even get over the चटनी bit. R-O-C-H-I-E has spelling. Find me on the gram या Facebook. We'll get talking. And for right now, मेरे साथ है मेरे mystery caller. Hello, naughty boy.
2: Hi, रोशी, कैसे हैं आप?
1: यार, मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप इतने cute sound करते हो ना, भोले से. और आपकी जो मैंने photos देखी हैं in your Insta profile, you are so hot, यार.
2: थैंक यू रोशी, मींस अ लॉट.
1: क्यूटी पाई. अच्छा, आपने जो मुझे अपना कन्फेशन लेके भेजा था इंस्टाग्राम पर, उसे देखकर मैं काफी हैरान भी थी. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, फुल डिस्क्लोजर, मैं थोड़ा सा हंसी भी थी. तो एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदाते रात को?
2: सो रोशी, आई वॉज इन योर इंस्टाग्राम लाइव. तब वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपके मैसेजेस, आपके उस पे कॉमेंट कर रही थी. तो फिर हम दोनों की, मैंने सोचा कि चलो इनसे बात करता हूँ, बिकॉज उनकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी. हम धीरे धीरे बात करने लगे. फिर एक दिन शी टोल्ड मी कि चलो मिलते हैं सेम जगह. तो हम गए वहाँ, मिले एंड हमने डिनर किया. फिर

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
0: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक चीज जो मैंने अपने रिलेशनशिप्स में सीखी है ना, वो ये है कि अगर हम अपने रिलेशनशिप में इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे, देन हमारा पार्टनर हम में इंटरेस्टेड होना कम हो जाएगा. एंड द वन प्लेस जहाँ पर आप बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हो इज एक्चुअली दैट इंटीमेट स्पेस ऑफ बीइंग इन अ बेडरूम विद अ पर्सन. और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, देन अकॉर्डिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च, तीन जो कॉमन फैंटेसीज होती है लोगों की इन बेड, वो ये होती है, पहला तो गेटिंग टाइड अप, दूसरा टू हैव अ थर्ड पार्टनर इन द रिलेशनशिप जब इंटर

हो रहे होते हैं, और तीसरा एक रोल प्ले का सिनारियो। अब कुछ कुछ लोगों के लिए ये तीनों चीजें आर लाइक टॉप ऑफ द लाइन, आप तीनों ट्राई कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए इन तीनों में से नथिंग वर्क्स, एंड फॉर सम पीपल इन तीनों में से एक या डेढ़ चीज चल सकती है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अपने रिलेशनशिप में जहां तक आप कंफर्टेबल हो, समटाइम्स पुशिंग द बाउंड्री इज नॉट अ बैड थिंग, एस्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो। लाइक आई रिमेंबर आई वॉज इन अ 3 year लॉन्ग रिलेशनशिप, और अगर उसमें आई हैडंट बिकम एडवेंचरस इन द इंटीमेट स्पेस, शायद मेरा

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: द शो स्टार्ट्स इन
4: आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप. सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था. क्योंकि ऑडियंस बदल गई है. अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है. कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे. शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है. कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या. तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी

0: क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है काना नंबर 20, राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। दिस इज रंग बरसे
1: नंबर 20।

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थी, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे भाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए। कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है, तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, बट जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप इसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: माशूका, एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है, लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहिए, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूं, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान एज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी डायरेक्टिंग अ फिल्म आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा एज द कास्ट, जावेद साहब के लिरिक्स और ए आर रहमान का म्यूजिक। यार ये कॉम्बिनेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना, या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले, लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माई रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से।
2: टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: राखी यादों की कारवां है,
2: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
1: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
3: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
4: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
0: Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। They forgotten about it. Jealousy को पैशन बना दिया है, possessiveness को प्यार, stalking को persistence और manipulation को relationship test. कभी कभी cheating को भी true love कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। लेकिन शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे। रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्राइंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। एंड दैट इज वॉट कॉकटेल 2 ट्राइड टू एक्सप्लोर व्हेन आई वॉच्ड इट ऑन OTT। यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए दैट ऑडियंस रोम कॉम्स चाहती है, टॉक्स कॉम्स नहीं। वी डोंट वॉन्ट टॉक्सिक लव, बट फ्रॉम टॉक्सिक लव आई वॉन्ट टू प्ले स्वीट इनोसेंट लव। बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया। इट्स माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. नंबर 3.

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अमाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग, इट वॉज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रोमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। So since a year, it has been in my voice. Someone comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also. Not everyone has the blessing of God also. And not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, इस गाने के लिए भी उसने मेरे लिए लड़ाई की है, उसने बोला है सबको, अरे अमल ने इतना अच्छा गाया है मुझे क्यों गवा रहे। तो मैंने बोला ऐसा मुझे चाहिए, सर इन लोग किसी की भी नहीं है, सर मेरी रिक्वायरमेंट है दैट यू एटलीस्ट सी इफ यू लाइक द सॉन्ग, पूरा बन गया चेक इट आउट। सो इट वॉज जस्ट अबाउट 3-4 मंथ्स बिफोर अभी दैट सॉन्ग केम दैट ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड रिविजिटेड द सॉन्ग 2-3 टाइम्स।
0: और आज गहरा हुआ को पीछे छोड़कर वही आवाज फिर से नंबर 1 बन गई है। दिस इज ये आवारापन, the new undisputed number 1 song on the Mirchi Top 20. Number 1.

0: और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं, कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिलो दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
2: Tera kya hoga, Kalia?
3: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
2: Ab Mirchi kha.
4: Radio Mirchi, it's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर। हाय, मैं हूँ श्रेया, और क्योंकि मैं एक आरजे हूँ ना, तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है। मतलब लोग मुझसे एक्चुअली में आकर के कहते हैं कि बस कर श्रेया, और ज्यादा बातें नहीं। अच्छा, जब आप किसी एक करियर को लेकर के बहुत ही पैशनेट होते हो ना, तो जनरली आप उसी करियर के लिए ट्राई करते हो। लेकिन हमारे एक बॉलीवुड स्टार ऐसे थे जिनके करियर की शुरुआत ऑडिशन से तो हुई, लेकिन कैमरे के आगे नहीं बल्कि माइक के आगे। ये जो लेजेंडरी स्टार थे ना, इनका ड्रीम था कैमरे के आगे आना, लेकिन उससे पहले ये माइक के आगे आए। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अभी बताऊंगी। कुछ गानों के उस पार, कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो कैमरे के आगे टेक 1 2 3 ये करके ऑडिशन दिया, लेकिन जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो माइक टेस्ट, हेलो चेक 1 2 ऐसे शुरुआत करी। पुरानी जीन्स पे हाय, दिस इज मी श्रेया। सुनील दत्त साहब की बात कर रही हूँ मैं, जिनका करियर का पहला जॉब जो था ना वो एज एन आरजे था। ही वॉज अ रेडियो जॉकी विद रेडियो सिलोन, और वहां पे काम करते करते ना सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा। ये सपना था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इंटरव्यू करने का। वो कौन सी एक्ट्रेस थी और क्या उनका ये ड्रीम पूरा हुआ, भाई मैं सारी चीजें एक बार में तो बताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बता दी तो तुम कहीं और ना चले जाओ, तो इसलिए तुमको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है मुझे। वापस अब पूरी कहानी बताती हूँ सुनील दत्त साहब की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, कहते हैं ना कि जब तुम कोई चीज पूरे दिल से चाहो तो कायनात साजिश करती है तुम्हें उस चीज से मिलवाने की। पुरानी जीन्स पर हाय, दिस इज मी श्रेया, और मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले सुनील दत्त साहब की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे जैसे करी, यानी आरजे बन करके। ही वॉज एन आरजे विद रेडियो सिलोन, जो उस टाइम का इंडिया का बहुत ही फेमस रेडियो चैनल था। यहाँ पे वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया करते थे, चैट शोज हुआ करते थे। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा कि काश कभी वो नरगिस जी को इंटरव्यू करें अपने खास शो पे। एंड कैन यू बिलीव कि ये सपना पूरा भी हुआ। नरगिस जी उनके रेडियो स्टेशन पहुंची, लेकिन सुनील दत्त साहब उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। इनफैक्ट उनसे एक शब्द भी नहीं पूछ पाए। क्यों? क्योंकि ही वॉज सो स्ट्रक विद हर ब्यूटी, वो उनकी खूबसूरती को बस देखते और निहारते रह गए, और नरगिस जी मुस्कुरा के वहां से चली गई। किसे पता था कि आने वाले सालों में नरगिस जी उन्हीं की वाइफ बनेंगी। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गानों के साथ विद मी श्रेया, और भी करेंगे ना, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।

अच्छा मुझे ये बताओ कि 13 साल में, 13 ईयर्स में आप कौन सी क्लास में होते हो? आई थिंक 6th या 7th। और जब आप 23 साल के होते हो तो क्या पढ़ाई कर रहे होते हो? शायद कॉलेज में, है ना? पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। सोचो कोई एक्ट्रेस इतनी कमाल कि उन्होंने 13 साल की उम्र में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो कि 23 साल के लड़के की माँ का रोल था। ये एक साउथ इंडियन फिल्म थी, हीरो साउथ इंडिया के मेगा स्टार, और ये हीरोइन पूरे इंडिया की जान। कौन सी हीरोइन थी ये? आहा, इतनी आसानी से नहीं, गाने सुन करके वापस आओ फिर बताती हूँ। यू आर लिसनिंग टू श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

कहते हैं कि एक्टिंग एज नहीं स्किल देखता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। 13 साल की लड़की ने 23 साल के लड़के की माँ का रोल प्ले किया था और ये बात ना कई सालों तक लोगों को नहीं पता चली जब तक श्रीदेवी जी ने खुद ये लोगों को नहीं बताया। एक साउथ इंडियन फिल्म आई थी जिसका नाम था मुंद्रू मुदीचू। इसमें श्रीदेवी जो कि तब सिर्फ 13 ईयर्स की थी, उन्होंने रजनीकांत जी की मम्मी का रोल प्ले किया जो कि उस टाइम पे 23 ईयर ओल्ड थे। और लोगों को ये बात पता भी नहीं चली जब तक खुद ये बात द हवा हवाई गर्ल ने नहीं बताई। एक अच्छे एक्टर के लिए ना एज लिमिट नहीं होती है फॉर द कैरेक्टर्स दे प्ले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो रेखा जी को हम सब बेहतरीन एक्ट्रेस की तरह जानते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि रेखा जी ने अपनी फेलो एक्ट्रेसेस को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनकी आवाज तक बनी है। जैसे जब मूवी आखिरी रास्ता शूट हुई, श्रीदेवी नई नई थी हिंदी इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी के साथ ये फिल्म थी, उनके हिंदी के शब्द इतने क्लियर नहीं थे और तब तक वो बहुत सारी साउथ की फिल्में कर चुकी थी। ऐसे में सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करने पे रेखा जी ने आखिरी रास्ता में श्रीदेवी को अपनी आवाज दी, यानी उनके लिए डबिंग की। याराना फिल्म के लिए नीतू सिंह के लिए अपनी आवाज दी। नीतू सिंह की तब तक शादी हो चुकी थी कपूर खानदान में और मूवी की पूरी शूटिंग खत्म, लेकिन डबिंग रह गई थी। प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हो रहा था बिकॉज मूवी कम्प्लीट ही नहीं हो पा रही थी। फिर क्या, रेखा जी ने नीतू सिंह की आवाज बन करके इस फिल्म में भी डबिंग की है। एंड देन शी स्टेप्ड इन फॉर स्मिता पाटिल जी। स्मिता पाटिल जी की मूवी थी वारिस, जिसकी शूटिंग के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में मूवी शूट हो चुकी थी लेकिन उनकी आवाज नहीं थी। रेखा जी यहाँ पर भी आई और स्मिता पाटिल की इस फिल्म को पूरा किया उनकी आवाज बन करके। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इसी बात पे रेखा जी का एक गाना हो जाए फ्रॉम द फिल्म उमराव जान सुन करके यहीं वापस

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
4: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, हमारी जो उस जमाने की फिल्में होती थी ना, उसमें विलेन्स बहुत पॉपुलर हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि विलेन हीरो से ज्यादा फेमस हो जाते थे। अब चाहे वो मिस्टर इंडिया के मोकैम्बो हो, हु बिकेम मोर पॉपुलर देन मिस्टर इंडिया हिमसेल्फ यानी अनिल कपूर, या फिर शोले के गब्बर हो जो कि जय वीरू से ज्यादा लोगों में छा गए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स की लाइन लग गई थी विलेन के घर पे, यानी अमजद खान जी के घर पे, और उन्होंने एक बिस्किट का ऐड किया जिसकी टैगलाइन पता क्या थी, अगर ये बिस्किट खाओगे तो गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। इंटरेस्टिंग है ना, ना जय की तरह ना वीरू की तरह, लेकिन गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। ऐसी ढेर सारे किस्से कहानियां हैं उस जमाने के, तुम्हारे साथ शेयर करती जाऊंगी। कहीं भी मत जाना, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 2903364724

0: यानी 9033 मिर्ची.
1: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन.
2: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा.
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

हफ्तों तक लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि शायद इस फिल्म की टिकट सुने मिल जाए। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। लोगों के घर के लोगों की बारियां लगी हुई थी कि आज ये बंदा जाकर के घर से खाना पानी लाएगा और दूसरा बंदा लाइन में खड़ा होगा। ये हाल हुआ था जब मुगले आजम रिलीज हुई थी। कहते हैं मुंबई के मराठा मंदिर के आगे तो लोगों में हाथापाई हो गई थी, कर्फ्यू लगने तक की नौबत आ गई थी। पीपल यूज टू स्टैंड इन क्यूज फॉर वीक्स टू गेट द टिकट्स। ऐसी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म की इंडिया ने पहले कभी नहीं विटनेस की थी। मुगले आजम की बात कर रही हूँ मैं। इसके टिकट्स भी ना बहुत ही खास तरीके से बिके थे। इसके टिकट्स में एक पूरा डॉकेट होता था, एक फोल्डर रखा गया था। तो अगर आप टिकट खरीदते थे आपको एक फोल्डर भी दिया जाता था। उस फोल्डर में दिलीप साहब और मधुबाला जी की फोटोग्राफ्स थी। नॉट जस्ट दैट, पूरी फिल्म को शूट करते समय जो जो खट्टी मीठी इंसिडेंट्स हुए थे ना वो भी लिखे गए थे। आज जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो जाए, ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी उसी जमाने में बना करती थी। लेकिन इस फिल्म ने मधुबाला जी को बहुत सारे घाव दिए थे जिसकी वजह से वो बिस्तर से कई हफ्तों तक नहीं उठ पाई थी। शी वाज बेड रिडन। क्यों हुए थे घाव अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद मिर्ची श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अब अगर उस जमाने की फिल्म की बात हो रही है तो मुगले आजम की बात नहीं करूं, ये तो गुनाह हो जाएगा मुझसे। आई एम श्योर आपने ये फिल्म देखी होगी, तो वो सीन याद है जिसमें मधुबाला जो है उनको जंजीरों से जकड़ा जाता है। के आसिफ साहब, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो हर चीज ऑथेंटिक चाहते थे, हर चीज रियल चाहते थे, तो इसीलिए मधुबाला जी के चेहरे पे वो पेन आए, उन्होंने एक्चुअल जंजीर यानी वो लोहे वाली चेन्स को उन्हें पहनाया था, जिसकी वजह से उनके इतने घाव हुए कि इस सीन को शूट करने के बाद वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। अब ये तो शरीर के घाव थे जो सबको दिख रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के होने की वजह से जो दिल के घाव थे उन्हें बहुत कम लोग देख पा रहे थे। इसके बारे में भी बताऊंगी, बस कुछ गानों के उस पार। कम राइट बैक, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
4: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे कर...

0: करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: तुमको मुझसे प्यार है।
1: अच्छा आप ये सोच सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब बच्चन जी के साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। हाय, मेरा नाम है श्रेया और आप मुझे सुन रहे हैं पुरानी जीन्स पर। ये हुआ था जब बच्चन साहब की इनिशियल सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले उन्होंने जितनी की थी ना, सब बॉक्स ऑफिस पे एकदम औंधे मुंह गिरती थी। सो इसी टाइम पे एक फिल्म आई बहुत ही प्यारी जो मुझे बहुत पसंद है, बॉम्बे टू गोवा। अब इस फिल्म के लिए महमूद साहब जो कि ये फिल्म बना रहे थे, उन्हें बच्चन साहब के ऑपोजिट एक हीरोइन चाहिए थी। जितनी भी हीरोइंस को उन्होंने अप्रोच किया, सबने साफ मना कर दिया, हम इस फ्लॉप एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। एक तो उसकी हाइट भी इतनी लंबी है कि हीरोइंस उनके साथ अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे में सिर्फ एक हीरोइन थी जिन्होंने हामी भरी, एंड दैट वाज अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी ने इस फिल्म में उनके साथ काम किया। अब यहाँ पे अमिताभ जी ने एक वादा किया, वो वादा कब कैसे कहाँ पूरा हुआ बताऊंगी पूरी कहानी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

अरुणा ईरानी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ तब काम किया जब कोई और हीरोइन नहीं करना चाहती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और बॉम्बे टू गोवा ये फिल्म बना रहे थे महमूद साहब। इसमें अमिताभ बच्चन को लिया गया। बच्चन साहब की जितनी भी फिल्म्स इससे पहले आई थी सब फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले विच एवर फिल्म्स ही वाज डूइंग सब के सब बॉक्स ऑफिस पे फेल हो रही थी। ऐसे में उनके साथ कोई भी हीरोइन नहीं काम करना चाहती थी। एक हीरोइन जिन्होंने हामी भरी वॉज अरुणा ईरानी। अमिताभ बच्चन जी ने अरुणा ईरानी की इस बात को एकदम दिल में बैठा लिया। आपको पता है एक वादा हुआ ऑन द सेट, जब मुस्कुरा के अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो अरुणा ईरानी ने बच्चन साहब से मुस्कुरा के कहा कि जब भी तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे ना तो मुझे अपनी किसी फिल्म में पॉजिटिव रोल देना, क्योंकि अरुणा ईरानी वॉज नोन टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर। ये वादा बच्चन साहब ने निभाया भी। अभिमान में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से बात करके अरुणा ईरानी को एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव रोल दिलवा के। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें और गाने श्रेया के साथ चलती रहेंगी, सो डोंट गो एनीवेयर, वापस आओ, आगे बढ़ाते हैं बातें।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे या श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन सारे हार्टलेस दिलबरों के लिए है जो अपने प्यार करने वाले को ना बहुत तड़पाते हैं। मतलब उनको समझ में आता है कि वो उनके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें मजा आता है उनको छेड़ने में, उनको तरसाने में, उनको थोड़ा तड़पाने में। ये गाना आज उन्हीं के लिए। श्रेया जाती है, कल मिलने फिर से आती है। इन केस यू मिस मी, यू नो वेयर टू कैच मी, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, डीएम कर देना। बाय बाय।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची का
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी

0: प्यास है।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: किशोर सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's Hot

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आरके जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Forgiveness को जिंदगी का सबसे बड़ा healing step माना जाता है. आइए इसे समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सिस्टर, आज आपसे मुझे बात करना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो मेरे ख्याल से हम सब के लिए बहुत जरूरी है लेकिन अक्सर होता नहीं है. उसको कहते हैं फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना किसी को. लेकिन जैसे जैसे

0: बड़े हो रहे थे, एक बार एक एक फ्रेज जो है वो कई बार सुनने को मिलता है कि फॉरगिवनेस इज अ वीकनेस। कई बार कहते हैं कि उससे वो जो तुम्हारे में वो जो ड्राइव है, पैशन है, रिवेंज कभी कभी आपसे वो काम करवा लेती है जो पीसफुलनेस नहीं करवा पाती है। तो जिन लोगों के लिए दो किलर इंस्टिंक्ट बोला जाता है, जिन लोगों को इस पे बड़ा किया गया है, उसके लिए क्या करें?
1: पहले तो हमें ये चूज करना है कि हमें फॉरगिव करना है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है, देयर सम पीपल वो कहते नहीं, हम तो मरते दम तक भी ये बात नहीं बोलने वाले, इनफैक्ट वो पीछे वालों को भी कहकर जाते हैं मेरे मरने के बाद भी उनसे बात नहीं करना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
0: जी।
1: So we have that category of people also. And if you are comfortable with that, it is okay.
0: Okay.
1: लेकिन there are some people who are not comfortable. वो पूछते हैं, वो forgive करना चाहते हैं, वो forget करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई बात पकड़ के रखी हुई है,
0: जी,
1: तो वो किसको तकलीफ दे रही होती है?
0: खुद ही को दे रही होती है।
1: So when we are forgiving, you know, बोलने में क्या आता है? मैंने आपको माफ किया। पर एक्चुअली वो सच नहीं होता है। हम किसी को माफ नहीं कर रहे होते, हम खुद को माफ कर रहे होते हैं। आपने मेरे साथ कुछ किया और मैं हर्ट थी, और फिर कुछ समय के बाद मैंने डिसाइड किया, अच्छा ठीक है, मैंने आपको माफ किया। पर ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आप तो बोल करके आपको तो फर्क ही नहीं पड़ा था, यू वर टोटली ओके विद इट। एज अ फादर आपको लगा नहीं मुझे तो ये बोलना ही चाहिए था, एज अ टीचर आपको लगा मुझे तो ये बोलना ही चाहिए था। पर आपकी बात को पकड़ा किसने था?
0: मैंने।
1: जैसे अगर कोई स्क्रैच लगाता है और आप उसको स्क्रैच पे स्क्रैच करते जाओ, खरोचते जाओ, तो
0: घाव
1: बन जाएगा, घाव। तो वो घाव कौन बनाता है?
0: मैं ही बनाता हूँ।
1: तो वो घाव हमें फॉरगिवनेस इज उसको हील करना, उस घाव को हील करना। वो कैसे करना है वो अलग चीज है, लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि अच्छा आई एम चूजिंग कि अब इसको और स्क्रैच नहीं करना है।
0: तो ज्यादातर ऐसा क्यों होता है कि फॉरगिव करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है एक इंसान के लिए?
1: पहले तो क्योंकि हम फर्स्ट थिंग इज चूज किया कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। डिफिकल्ट टास्क इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल है उस हर्ट के लिए, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। बिकॉज जो अंदर में आप सफरिंग हो रही होती है ना, वो आपको लगता है वो उनकी वजह से है, इसीलिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको लगता है मैं उनको कैसे माफ कर सकता हूँ। But then in Buddhism also they say that it is like drinking poison
0: and expecting somebody else to die. I think,
1: but when you're drinking poison, you feel that they are suffering. That is why it is so difficult to let go, क्योंकि you are drinking poison. आप उस दर्द में हैं, पर आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं उसको दर्द हो रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सैडनेस और एंगर जैसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैंने कुछ लोगों से जब बात की तो उसमें से एक आध चीज जो निकल के आई वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी पता चले कि मुझे कैसा लगा जब तुमने काम किया, इसीलिए मैं फॉरगिव नहीं करना चाहता कि जब तक यू डोंट गो थ्रू व्हाट आई वेंट थ्रू हाउ कैन आई फॉरगिव यू। तो इस ये जो बहुत स्ट्रांग भावना है,
4: बहुत स्ट्रांग,
3: क्योंकि मैं बहुत डीपली हर्ट हूँ और मैं तुम्हें कैसे फॉरगिव कर दूँ जब तक तुम समझो ही नहीं, वरना तुम किसी और के साथ ये करोगे।
4: जब हम हर्ट होते हैं ना तो हम हर्ट करना चाहते हैं, सैडिस्टिक प्लेजर जिसको बोलते हैं।
3: बिल्कुल, हर्ट पीपल कहते ही हैं,
4: उसमें एक हमें सुख मिलता है, उसको सैडिस्टिक प्लेजर बोलते हैं। कि जब तक मुझे, ये भी एक तरह का जैसे शुरू होता है आपको थोड़े से दुख से, समझो किसी ने आपके साथ कुछ किया, आप वो सैडनेस से बिगिन होता है, फिर वो सैडनेस अंदर अंदर अंदर अंदर एंगर में बदल जाता है, फिर वो एंगर धीरे धीरे हेटरेड में बदल जाता है, फिर वो हेटरेड धीरे धीरे रिवेंज में बदल जाता है।
3: बिल्कुल,
4: सो इट ऑलवेज बिगिंस विद दैट सैडनेस।
3: राइट,
4: आप उदास हैं पर आपने अपने को हील नहीं किया।
3: राइट,
4: या किसी ने आपको हील नहीं किया या आपने अपने को हील नहीं किया, तो वो धीरे धीरे गुस्से में बदल जाएगा।
3: राइट,
4: फिर वो गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदल जाएगा, फिर वो धीरे धीरे रिवेंज में बदलेगा, और आपको लगता है कि रिवेंज लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार ही आपको लगेगा भी हल्का सा, क्योंकि आपने वो सारी नेगेटिव एनर्जी क्या करी है, रिलीज कर दी है, बट वो सारे प्रोसेस में आप अंदर जल रहे थे लिटरली।
3: ये बदलापुर बोल के एक फिल्म आई थी, उसमें वरुण धवन वांट्स टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज वाइफ, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जो मर्डर हैं, और वो उनको जेल में मिलने जाते हैं जब ही अवेंजेस हिम, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लास्ट में उसको आके बोलते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो जबकि मैं बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। तो बहुत खूबसूरत बात कही कि ज़्यादातर हमको लगता है रिवेंज लेने के बाद हमें अच्छा महसूस होगा, कुछ क्षणों के लिए शायद महसूस होगा, लेकिन जिस तरह के इंसान हम बन जाते हैं शायद हम अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते।
4: हम बहुत बिटर बन जाते हैं। जब हम बहुत समय किसी दर्द को अपने अंदर रखते हैं, चाहे कुछ भी कारण होगा, बाहर कोई भी कारण है, वो कारण ठीक भी नहीं होगा, पर उसकी एक निशानी ये होती है कि वो बहुत बिटर हो जाता है वो व्यक्ति।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 89.4।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आपके साथ बुरा होना इसका ये मतलब नहीं कि आप भी दूसरे

0: के साथ बुरा करें। आइए इस बात की गहराई को समझते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: लेकिन ये जो फीलिंग है ना, कि जरूरी नहीं कि रिवेंज का हो, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आई वेंट थ्रू समथिंग, मैंने बहुत दर्द सहा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये सहो ताकि तुम्हें पता चले कि ये दूसरों के साथ नहीं करना। वो कहते हैं ना कि मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रहकर जले मन तेरा भी, किसी के मिलन को अनामिका तू भी तरसे। ये तो बहुत पुराने गीत में लिखा गया था।
0: मैं कई बार ये एग्जांपल शेयर करती हूँ, शायद हमने प्लेटफॉर्म पर पहले भी लिया, कि हमारे पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। जब हम किसी पेन से गुजरते हैं तो हम समझते हैं कि ये चीज राइट नहीं है, और या तो हम चूज कर सकते हैं कि हम दोबारा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, When I was in a boarding school, एक नॉर्मल कल्चर होता है रैग करना, बुली करना, नॉर्मल कल्चर होता है। जब आप रैग और बुली होते हो, यूजली आप जूनियर क्लासेस में होते हो, मेजोरिटी ऐसे होते हैं कि इतना उससे दुखी हो जाते हैं और इतना वो दर्द एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भी जब when we get into
2: हम भी रैग करेंगे।
0: एक वो ऑप्शन है। आप इतने दैट इज एक्चुअली यू नॉट ब्रिंगिंग एनी शिफ्ट इन द सोसाइटी। आप कहते जो मेरे साथ हुआ ना, जो आपने कहा कि वही हम करेंगे, जो मेजोरिटी होता है ऐसे ही है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके दर्द को किसी ने हील नहीं किया, ना आपने नहीं किया, ना किसी ने नहीं किया, पर वो करने से तो वो चीज बढ़ रही है ना। वो कुछ उससे क्या एक आप जैसे आपने वो लास्ट लाइन कही कि मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, सो उससे क्या बेहतर हुआ। और एक है कि आपने रियलाइज किया था उस समय कि उन्होंने ऐसा किया, ये राइट नहीं था। बहुत इमोशनल टर्मोइल से हम गुजरे, बहुत डिस्टर्बिंग वो सब कुछ था, एंड आप डिसाइड करते हैं कि आई विल नॉट डू दिस एवर।
2: ऐसा तो मैं नहीं बनूंगा। हाँ।
0: मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं लविंग हूंगा एज अ सीनियर, मैं लविंग हूंगा, काइंड हूंगा, हेल्पफुल हूंगा, कंपैशनेट हूंगा, जो भी। वो चॉइस भी तो आपके पास है कि नहीं है। चॉइसेस हमारे पास हर समय होती है, पर क्योंकि हम हर्ट होते हैं तो हम रिवेंज वाला चूज कर लेते हैं।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Forgiveness weakness नहीं, एक powerful sign है. आइए इसे समझे.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: कहा गया कि an eye for an eye will make the entire world blind, तो ये करना बेहतर नहीं है.
4: गांधी जी तो ऐसा कहते ही थे और हम ये सुनते भी थे, बट अगेन इसमें फिर वो क्या कहते थे कि लव इज फॉर somebody who is a powerful soul, it is not a quality of weak. जो लव है, लव एंड फॉरगिवनेस जो है, वो क्वालिटी वीक की नहीं है. वो क्वालिटी एक बहुत स्ट्रांग व्यक्ति की है.
3: क्या बात.
4: एक स्टोरी, ये रियल स्टोरी है. एक मदर थी जिसका बेटा कुछ खरीदने के लिए बाहर गया था, 18-19 ईयर ओल्ड, और वो जब खरीद करके वापस आ रहा था तो तीन जने ने उसको अटैक किया.
3: अच्छा.
4: चोरी भी कर लिया, सब सामान चोरी भी कर लिया, बहुत ब्रूटली उसके साथ मिसबिहेव किया, मारा, उसको हॉस्पिटल लेकर के गए. इंजरीज जो थी वो बहुत सीरियस थी, वो मर गया.
3: अच्छा.
4: बच्चा मुश्किल से 20 इयर्स ओल्ड होगा, और जिन्होंने अटैक किया था उसमें से तो एक माइनर था, वो तीन जने थे उसमें से एक माइनर था. और कोर्ट का ये कि मैंने पकड़ा गया, वो केस चल रहा था, और वो मदर के पास उस समय ऑप्शन तो है ही ना. मैंने आप कहेंगे तो नेचुरल है कि कोई भी मदर को बहुत गुस्सा भी आएगा, उस बच्चे से बहुत नफरत भी होगी. पर उस मदर ने सबके सामने, एंड दिस इज़ अ वेरी समथिंग दैट यू कैन फाइंड ऑन सोशल मीडिया, उसने सबके सामने कहा, हर दिन अल्लाह हमें रहम करना सिखाता है. हम सब इमेजिन नहीं करते कि ये सीन हमारे सामने आ जाएंगे, पर हर रोज जब हम अपने धर्म में जाते हैं या पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें हर रोज रहम करना सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है. और इसीलिए आज मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि नफरत करने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आ जाएगा. और न ही नफरत करने से कोई आपके जीवन बनेगी. और आप जो भी जीवन चूज करोगे उसका प्रभाव सोसाइटी पर पड़ने वाला है, बिकॉज यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इसलिए आई चूज टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो दैट इफ यू इम्प्रूव द सोसाइटी विल इम्प्रूव.
3: वाह, क्या बात है.
4: अगेन इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. हम में से सब कहेंगे नहीं, ऑर्डिनरी है, गुस्सा तो आएगा, नफरत तो आएगा, पर वहीं पर एक सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन है. एंड देन जब जब, क्योंकि वो माइनर था, कोई उसके आगे पीछे था नहीं, दैट वुमेन टुक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एवरी मंथ जब मिलने का वो पीरियड होता था वो जाकर के उसको मिलती थी. बट ये कितनी पावर की निशानी है उस समय. और फिर जब वो रिलीज हुआ, जब आई थिंक वो जो प्रिजनमेंट थी वो कोई 10-15 साल की थी, क्योंकि मर्डर था, माइनर था इसलिए इतनी थी, शायद ज्यादा भी होती. बाहर जो होना था वो सब कुछ हुआ. और होता ही है, फॉलो करना भी पड़ता है, चाहे वो हमारे लॉज हैं, चाहे वो पनिशमेंट है. लेकिन अंदर हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि इतने बड़े सीन के बाद भी अब मुझे उस चीज को पकड़ के रखना है.

0: उसको रिपीट करना है, बिटर बन जाना है, और हम कहेंगे पर ये नेचुरल है ना, हम कह सकते हैं ये नेचुरल है। वो मदर बिटर हो सकती है और वो ऐसे ही मर भी सकती है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उसके पास वो ऑप्शन भी था जब उसने कहा कि नफरत मेरे बेटे को तो वापस लेकर नहीं आएगा। एंड अनदर थिंग शी सेड, कहीं ना कहीं उसकी डेथ भी प्रीडेस्टिन्ड थी, क्योंकि डेथ बर्थ डेस्टिन्ड होती है, और शायद उसका पर्पस था आपकी जीवन बनाना।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot. मन में रिवेंज रखने का सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है, आइए इसे समझते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: ये बहुत खूबसूरत कहानी है और बहुत प्रेरणा देती है जब हम सुनते हैं ऐसी कहानियां, और फिर हमको बहुत इससे इम्प्रेशन भी होता है। इससे मेरा एक सवाल है जो मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि यार फॉरगिव करने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो छूट गए, उनको उसकी सजा नहीं मिली और उनको वो गलती का एहसास नहीं हुआ जो उनको होना चाहिए था। तो आपने अभी भी जो बताया, जो वाक्या बताया, उसमें एक पहलू ये है कि माफ़ कर दें, और कहते हैं कि अल्लाह हमेशा कहते हैं कि रहम करो, और दूसरा है कि कुछ लोगों में भावना होती है कि ये तो गलत किया ना उन्होंने, उसकी सजा तो उसकी मिलनी चाहिए, सो आई कांट फॉरगिव देम क्योंकि फिर वो छूट जाएंगे। यार
3: सजा दे देना जो देनी है सजा दे दे, सजा देने में हर्जा नहीं है। अगर आपको लगता है किसी ने कुछ गलत किया है, अगर उसके कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में गलत नहीं होता, बाहर का अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं या सजा ले रहे हैं, लॉज बने ही इसलिए होते हैं। आप अगर किसी को पनिश भी करते हैं तो वो भी गलत नहीं होता, पर आप क्या कह रहे हैं कि मैं उसको माफ नहीं कर सकता। ठीक है, जब हम कह रहे हैं हम उसको माफ नहीं कर सकता का मतलब क्या है?
2: मतलब क्या है कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता,
3: मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। किसको भूल नहीं सकता?
2: जो उसने मेरे साथ किया,
3: जो उसने मेरे साथ किया था, तो मैं उसको भूल नहीं सकता, तो मैं उस चीज को क्या करूंगा?
2: दिमाग में बैठा के रखूंगा,
3: दिमाग में बैठा के रखूंगा। तो किसका दिमाग खराब होगा?
2: मेरा ही होगा।
3: तो फॉरगिवनेस का मतलब क्या है?
2: कि पहले उसको दिमाग से हटाओ,
3: उसको दिमाग से हटाओ। उसका मतलब ये नहीं है, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपका बिहेवियर राइट था। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको फॉरगिव कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो किया था, अगर उस मदर ने उस बच्चे को फॉरगिव किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे ने जो किया था वो राइट था। वो तो 100% रॉन्ग था,
2: बहुत बड़ी,
3: और उसकी सजा भी उसको मिली, पर उसका पर्पस इतना था कि हम उस चीज को लेकर के अब अपना जीवन थोड़ी ना खराब करेंगे। तो हम समझते हैं फॉरगिवनेस, इसलिए हमने जो पहले कहा ना, हम फॉरगिवनेस को क्या कहते हैं कि आपको हम फॉरगिव नहीं करेंगे, पर एक्चुअली हम किसको फॉरगिव नहीं कर रहे होते हैं?
2: अपने आप को।
3: क्योंकि पकड़ के तो हमने रखा है ना, जैसे आप देखें ये बॉटल है, ये मैंने पकड़ी हुई है, ये कितने ग्राम की है?
2: 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम की,
3: चलो 100 ग्राम की है। अगर ये 100 ग्राम की बॉटल मुझे पकड़ के रखनी है तो मुझे ये हल्की लगेगी,
2: बिल्कुल
3: है ना, अभी पकड़ी हुई हल्की लगेगी। लेकिन अगर 1 घंटा ऐसे पकड़ के रखनी पड़े
2: तो फिर दर्द होने लगेगा हाथ में, हथेली पे।
3: किसको दर्द होने लगेगा?
2: हथेली को,
3: जिसने पकड़ के रखा है।
2: हाँ।
3: बॉटल को कुछ नहीं हो रहा।
2: हाँ। बहुत सही बात है,
3: बॉटल को कुछ नहीं हो रहा, हाथ को दर्द होगा, और एक दिन पकड़ के रखना पड़ेगा,
2: पैरालाइज हो जाएगा,
3: 1 महीने में तो हो ही जाएगा।
2: सही बात,
3: जिसने पकड़ा है उसका नुकसान होता है, बॉटल का नुकसान नहीं हो रहा है, पकड़ने वाले का नुकसान हो रहा है। छोड़ना है कि नहीं वो चॉइस है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Oh no!
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
5: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
9: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: रिजेंटमेंट को पकड़े रखना सिर्फ हमारी एनर्जी को हैवी बनाता है। आइए समझते हैं कि इसे छोड़ना क्यों जरूरी है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने बहुत अच्छी बात कही कि जरूरी नहीं है कि उसने जो किया वो सही है। तो फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि हम ये कहें कि जो उसने किया वो सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है डिस्टिंक्शन कि फॉरगिव करना मतलब ये कि तुमने जो किया वो गलत है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आई चूज टू फॉरगिव यू, बहुत ज़रूरी है।
4: यस यस एब्सोल्युटली, फॉरगिवनेस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सामने वाले ने जो किया है वो राइट है। सामने वाले ने झूठ बोला हो सकता है, सामने वाले ने चीट किया हो सकता है, सामने वाले ने कुछ भी किया हो सकता है। तो वो समझना कि वो गलत है वो तो समझना ही है ना।
3: क्या बात,
4: सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है। समझो भले, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग, बट नाउ डोंट मेक इट, आप उसको ले करके अंदर में हर्ट हो और बिटर हो और उसको पकड़ के रखो, वो चॉइस है। वो हमें करना है, या अगर हमें किसी को सुधारना भी है तो हम कैसे उसको सुधार सकते हैं? अगर हम ही अंदर से इतने दर्द में होंगे तो हम कैसे उनको किसी भी प्रकार का सपोर्ट दे सकते हैं?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
1: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to

0: 5% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
3: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है.
4: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू.
3: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट.
4: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम. एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: जी, इट्स हॉट। बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Forgiveness का काम है आपको overthinking से आजाद करना. आइए इसे समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सारा मोंटाना बोल के एक लेडी हैं, टेडेक्स में आई थी, वो बहुत खूबसूरत सी उन्होंने एक स्पीच थी और उनकी स्पीच मैं सुन रहा था. तो वो कहती हैं कि फॉरगिवनेस इज डिजाइन टू सेट यू फ्री. व्हेन आई से आई फॉरगिव यू एंड आई कोट, What you're really saying is, I know what you did. मैं जानती हूँ तुमने क्या किया. It's not okay. मैं बिल्कुल okay नहीं हूँ तुमने जो किया उससे. But I recognize that you are more than that. जो आपने थोड़ी देर पहले उस बच्चे के बारे में भी और माँ के बारे में भी जो कहानी सुनाई, I recognize that you are more than that. I don't want to hold us captive to this anymore. I can heal myself. And I don't need anything from you. तुमसे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है.
4: This is so beautiful.
3: बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत प्यारा लगा.
4: Just reading it can make you feel so freeing.
3: Yes.
4: Because you know we always want to shift the blame, na?
3: जो उनके
4: जो last line थे कि I don't want anything
3: from you.
4: मना I don't want कि अगर आप ऐसे ही बिहेव करेंगे then only I will be okay. Otherwise I will be hurt and I will not forgive you.
3: तो उनकी जो शुरुआत वाली लाइन है, फॉरगिवनेस इज डिजाइन टू सेट यू फ्री, इसलिए तुम शायद फॉरगिव करना सीखो, क्योंकि आपने कहा ना कि वो दिमाग में अगर लेके बैठे रहे हम तो हम ही परेशान होते हैं. एक बोतल को लेके अगर हम खड़े रहे तो हमारा ही, हमको ही दर्द होगा, हम ही दर्द में जाएंगे. तो इट्स बेटर टू फॉरगिव. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू फॉरगेट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आया कि फॉरगिवनेस और फॉरगेटफुलनेस दो अलग चीजें हैं.
4: फॉरगेट तो बहुत होता भी नहीं है एक्चुअली. फॉरगेट क्या होता है? फॉरगेट का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो चीज अभी आपके अंदर जो पहले इतना पेन क्रिएट कर रही थी वो नहीं कर रही होती. बाकी समझो जैसे आपको कोई स्कार होता है तो स्कार को देख करके आपको कई बार सारी स्टोरी याद आ जाती है.
3: बिल्कुल,
4: ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. लेकिन वो स्कार आपको अब कोई और दुख नहीं दे रहा है, हर्ट नहीं कर रहा है. तो एक्चुअली में जो आपके साथ हुआ होता है आप ऐसे नहीं उसको बोल सकते.
3: बिल्कुल.
4: लेकिन अब जब आप उसको याद करते हो वो आपको अंदर में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा होता, आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील करा रहा होता. आप बहुत कंफर्टेबली किसी के साथ शेयर भी कर पाते हैं और आप ये भी बता देते हैं व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस.
3: ये बहुत बहुत अच्छी बात.
4: तो वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाता है.
0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit Sanatan Vidyalaya.

0: .org or call 908-671-1344.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी तो हंसाए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: फॉरगिव एंड फॉरगेट, इसका सही मतलब क्या होता है, आइए इसे समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: बट एक चीज बताइए कि हम किसी को फॉरगिव कर सकते हैं विदाउट फॉरगेटिंग, जो आपने कहा उस

0: इंसान ने क्या किया वो जरूरी है, क्योंकि हम सेल्फ प्रोटेक्शन फिर नहीं कर पाएंगे, वरना हम बार बार उसी ट्रैप में फंसते रहेंगे।
1: इसीलिए तो हमने कहा ना, हम फॉरगेट तो कर ही नहीं सकते।
0: हाँ।
1: वो तो रहता ही है, लेकिन वो चीज अभी सिर्फ मुझे पेन नहीं क्रिएट कर रही है।
0: एग्जैक्टली तो अब हम सीख रहे हैं कि उससे क्या हुआ और आगे ना हो, इसके लिए हम अपनी जिंदगी आगे।
1: हाँ, बाकी कैसे, जो चीज आपके साथ हो गई वो एक्चुअली डिलीट तो होती नहीं है, फोन से डिलीट हो सकती है।
0: सही बात है,
1: कोई भी चीज है आपके फोन से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ही वो इम्प्रेशन अंदर चला गया वो डिलीट नहीं हो सकता।
0: बहुत बढ़िया।
1: वो इतना हो सकता है कि उस चीज को सोच करके आप बहुत रोने से भी लग जाते हैं, कहीं होते ना वो बात भी आई, किसी ने उस चीज का जिक्र भी किया,
0: उससे भी दर्द आ गया।
1: और एक बात हो रही है, आप खुद ही शेयर कर रहे
0: हैं।
1: कई लोग आप देखेंगे वो अपने एक्सपीरियंसेस प्लेटफॉर्म पर जाकर के शेयर कर रहे होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कोई ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें वो सदा के ट्रॉमा में भी हो सकते हैं, जैसे ये वेमेन है, बट वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है जो औरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये एक चॉइस है। सो दैट इज नॉट क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ यू नो डिस्टर्बेंस विद इन यू एनीमोर।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Desi people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स विच हैज ऑफिशियली बिगन। या फिर सफे में किसी के शोल्डर पे एक्सीडेंटली हार्ड रेस्ट बना रहे हो या किचन में परौंठे सेकते सेकते लाइफ के डिसीजंस रीथिंक कर रहे हो, आई हैव गॉट यू एंड आई हैव गॉट यू फॉर अ फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ बिकॉज मॉर्निंग्स आर बेसिकली लाइक मसाला डोसा। जितना बाहर से क्रिस्पी होगा उतना ही अंदर से स्टफी होगा और स्टफ करने के लिए मेरे पास है बॉलीवुड के गाने, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन एट ऑल। सुबह सुबह मिर्ची पर एकदम क्लियर एंड क्रिस्पी होती है, तो वॉल्यूम को, मूड को, स्माइल को चढ़ा लो, अपने दिन को मिर्चीदार बना लो। आज का मिशन है नो टेंशन एट ऑल, गुड म्यूजिक, गुड वाइब्स एंड बहुत सारी बातों के साथ आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स टू मिर्चीफाई।

फॉर डे विद मी प्रिसिला। फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर लो। मेरे पास एक कॉन्टेस्ट भी है तुम्हारे लिए, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर अगर कॉन्टेक्ट करना है तो 9033 मिर्ची, दैट्स माई नंबर, 9033647244। अभी के लिए मिर्ची दैट बैंगर्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

0: funding. Beat your locked rate with our rate saver today.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
3: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
5: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर वेदर चेक। बिकॉज आउटफिट चूज करने से पहले वेदर का मूड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम देसी पीपल का स्वैग ही खत्म हो जाता है। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अ सनी 62 डिग्रीज फारेनहाइट, बट फील्स मोर लाइक 64 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि वेदर जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर बोनस में दे रहा है। आज का टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 62 से लेकर 83 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, विद द फील्स लाइक टेम्परेचर गोइंग फ्रॉम 60 to 85 degrees Fahrenheit. और रेन के 0 मिलीमीटर्स के चांसेस हैं, जस्ट लाइक इन द लास्ट 24 आवर्स 0 मिलीमीटर्स इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स एज वेल। अराउंड 4 से 5 बजे शाम को पार्टली क्लाउडी स्काइज होने वाला है, एंड बाय 5 पीएम मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस हो जाएंगी। हाई आज जाने वाला है 83 डिग्रीज फारेनहाइट तक, ऑलमोस्ट सिमिलर टू यस्टरडे। कल का टेम्परेचर मैक्स आउट हुआ था 79 डिग्रीज फारेनहाइट पर। और वेदर के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी लेते जाओ, मिर्ची करेगा बंधन पूरा चल रहा है टेस्ट मिर्ची पर, ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ, जिसमें तुम जीत सकते हो नानक फूड्स की तरफ से अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स। और अगर जीतना चाहते हो तो फटाफट से अभी के भी व्हाट्सएप खोलो, टाइप करो RAKHI राखी एंड सेंड इट टू 9033 मिर्ची, यानी कि 9033647244। तो मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टा पर और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं वहां पर 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर, विजिट करो वीरानीज्वेलर्स.com पर। एंड व्हाइल यू आर रजिस्टरिंग फॉर द कॉन्टेस्ट, लेट मी प्ले सम मिर्ची दर बैंगर्स फॉर यू ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27 एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Time for updates from around the world with me, Priscilla, only on Mirchi Mornings.
0: Mirchi Hour Got 3.
1: सबसे पहले द स्टेट डिपार्टमेंट हैज टेम्पररली पॉज इमिग्रेशन वीजा इंटरव्यूज वर्ल्ड वाइड व्हाइल कॉन्सुलर ऑफिसर्स अंडरगो ट्रेनिंग ऑन एनहांस्ड एप्लीकेंट स्क्रीनिंग सम एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग इन इंडिया हैव रिसीव्ड कैंसिलेशन नोटिसेस एंड देयर इज करंटली नो क्लियर रीस्टार्ट डेट एंड फॉर दोज जिनका इंटरव्यू ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट अज्यूम योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स हुज इंटरव्यूज आर अफेक्टेड हैव बीन नोटिफाइड दैट अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग कैंसल्ड और रीस्केड्यूल्ड एंड they'll be given information about a new date. So, apni email check karte rahiye, official updates follow kijiye and

जब तक नई डेट कंफर्म ना हो नॉन रिफंडेबल फ्लाइट या ट्रैवल प्लान्स मत बनाइए। नंबर टू पर नेपाल से डेविस्टेटिंग खबर आ रही है। नेपाल के रसुआ रीजन में सिवियर फ्लैश फ्लडिंग के बाद हंड्रेड्स ऑफ ट्रैवलर्स आर रिपोर्टेड मिसिंग इंक्लूडिंग 105 इंडियन नेशनल्स। रेस्क्यू एंड वेरिफिकेशन एफर्ट्स आर अंडर वे। इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन सो फैमिलीज शुड रिलाई ऑन ऑफिशियल अपडेट्स रादर देन अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पोस्ट्स। सेंडिंग आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स टू एवरीवन अफेक्टेड। एंड lastly, country music icon Dolly Parton has died at 80 following a brief battle with cancer. From Jolene to I Will Always Love You, she gave generations unforgettable music plus a legacy of philanthropy and literacy work. A true original icon. And that's your Mirchi Abaka 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieta la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello. अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं।
3: तो मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
3: डू? I am an entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: भैया मेरे राखी के,
6: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर।

0: with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
1: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
2: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
3: I enjoy using inefficient and complex software, Mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use. साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
10: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
9: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
10: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
11: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
12: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग. राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है.
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और बॉलीवुड से आ रही काफी इंटरेस्टिंग थिएटर अपडेट्स। यश स्टार और टॉक्सिक के मेकर्स ने ग्लोबली थिएटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि साउंड जो है 5.0 से नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्हाई? फिल्म का फाइनल साउंड मिक्स एक स्पेसिफिक डॉल्बी प्रोसेसर सेटिंग पर क्रिएट किया गया है और मेकर्स का कहना है कि अगर वॉल्यूम 5.0 से नीचे गया तो डायलॉग की क्लैरिटी इफेक्ट हो सकती है। मतलब कि थिएटर वालों को बेसिकली बोला गया है वॉल्यूम कम किया तो डायलॉग तुमसे नाराज हो जाएगा। ऑफ कोर्स फिल्म को अभी तक रिव्यूज काफी मिक्स्ड टू नेगेटिव मिले हैं, लेकिन अगर तुम मूवी देखने जा रहे हो एटलीस्ट डायलॉग क्लियरली सुनाई देने चाहिए, वरना ऐसे लोग जो पास में बैठते हैं ना पूछते रहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वैसे लोगों के साथ बड़ा इरिटेशन होने लगेगा। और वैसे भी नेगेटिव पब्लिसिटी से कहां कोई मूवी फ्लॉप हुई है बॉलीवुड में, फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह एन एनिमल। और अब बॉलीवुड हीरो से चलते हैं हीरो की तरफ। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर तुम्हें मिल रहा है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड डायमंड की मेकिंग charges. And if you've got old gold sitting in your drawer somewhere doing absolutely nothing, maybe it's time to give it a Bollywood level ka makeover. Lekar jao Tanishq par, exchange karao 0% deduction par. Of course, terms and conditions are applied. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Follow karo mujhe Instagram aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot. It's the

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
1: Oh, Daljeet Dosanjh. Oh, Pari. Pari, aap kya lene aaye ho?
2: Shuddh Desi Ghee.
1: Lo, Pari, iska taste bahut hi acha hai.
2: Ghee taste ke liye thodo khate hain, ghee sehat ke liye khate hain. Mujhe chahiye shuddh desi ghee, jo ghar wala taste de. Jo brand bhi ho na, wo trusted ho. Wo ek naam mere dimag mein nahi aa raha.
1: Nanak Ghee, Paji.
2: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
0: फूड
3: यस,
0: शॉपिंग
3: यस,
0: एंटरटेनमेंट
3: डबल यस,
0: और हेल्थ फेयर
3: ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही जगह। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल।
4: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find of 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट। हेलो,
3: हाय, माय नेम इज संध्या, हाउ आर यू प्रिसिला?
2: हाय संध्या, आई एम गुड, हैप्पी राखी टू यू संध्या।
3: हैप्पी राखी टू यू टू। माय ब्रदर इज नॉट हियर, बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम, दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम, माय सिस्टर, ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम, एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर, लाइक you know, like we used to sit together and put rakhis on my brother. Hmm. And then we used to get like, you know, all those karare karare note. They used to get from bank. We used to eat those ghevar.
2: Aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
3: Well, abhi to sirf we just order online and then they get it and then they, you know, video call and then we just, you know, just say happy rakhi to them. So yeah, we miss those days. Yeah.
2: Okay. And that's kind of the sad reality of life. कि अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे।
3: एग्जैक्टली, या वी हैव यू नो वी हैव वी इंडियंस एंड वी मेक रिलेशंस सो क्विकली यू नो विद, सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम।
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
6: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
5: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
6: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road,

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: चलो पता करते हैं गोल्ड का क्या हाल चाल है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: rajjewels.com विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग एंड हैप्पी ओनम टू ऑल। जितने दोस्त हमारे ओनम सेलिब्रेट करते हैं उनको ओनम की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजजोल्स की टीम के साथ। आज गोल्ड फॉर 620 4620 डॉलर पट रहे हैं और स्ट्रेट कर रहा है। और जैसा ओनम के दिन हम चाहते हैं कि अपने लव्ड वंस के लिए कोई खूबसूरत सा तोहफा लेके जाएं, राज ज्वेल्स के पास 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एंड 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, खूबसूरत से खूबसूरत डिजाइन एंड वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। ट्रांसपेरेंसी के साथ आप समझ सकते हैं कि कितने परसेंट ऑफ गोल्ड के चार्ज पे आप मेकिंग पे कर रहे हैं एंड शिप करा सकते हैं टू एनी लव्ड वंस विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। आइए rajjewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी ओनम टू ऑल।
1: एंड देयर यू गो, गोल्ड का अपडेटेड रेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे
0: हॉट। दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: Mirchi Mornings with Priscilla, only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, and it's time for your daily dose of updates from around the world. सबसे पहले न्यूयॉर्क मेयर ज़ोरान ममदानी वॉज आस्ट अबाउट एन आरएसएस चीफ मोहन भागवत इवेंट एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन. ममदानी सेड ही डजंट सपोर्ट द रैली बट क्वेश्चन्ड वेदर द सिटी हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू कैंसल अ प्राइवेट इवेंट. ही ऑल्सो स्पोक अबाउट हिज फैमिलीज कनेक्शन टू इंडिया एंड द सेक्युलर रिपब्लिक ही वॉज टॉट अबाउट. नंबर टू पर, अ ज्वेलरी ब्रांड हैज विथड्रॉन इट्स रक्षाबंधन एड फीचरिंग कृति सैनन आफ्टर बैकलैश ओवर हर आउटफिट एंड अ सीन वेयर शी टाइज अ राखी टू dog. The brand said it respects Indian culture and didn't intend to hurt sentiments. Kriti defended the ad saying culture and tradition are in a woman's heart, not in her neckline. And lastly, OpenAI CEO Sam Altman reportedly commissioned just 7 custom watches featuring the OpenAI logo, the words compute is destiny, and even a Python inscription on the back. And the price? The model starts around $180,000. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Follow me Instagram and X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: लगा
1: रहते हो
0: सच।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: जयदीप
2: हाँ जी
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था
2: हाँ जी
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको काम क्यों नहीं करेंगे
3: क्या यूज करूं आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है
2: अरे आप बढ़िया क्वालिटी के दिए 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना काम नहीं हो रहा
2: आप सही से काम करके देखिए ना काम नहीं करेगा
3: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ कोई आना जाए बस ये तो है भी बड़ा रिस्की ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ ये टॉर्च चला ली ठीक है ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा पहले ही पकड़ा जाऊंगा चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ पांच खोल के देख ली मैंने पूरे बैंक में पांच लॉकर है एक नहीं खुल रहा कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो आप जो कहोगे हो जाएगा काम कर लिए काम जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ आधे घंटे से खोली नहीं रही
2: तू कहाँ पे है तू
3: बैंक में
2: अबे तू पागल है क्या बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर अपने हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार ये
3: खोलूंगा ना खुल ही नहीं रहा क्या करूँ आप
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर तू तू फोन रख भाई मेरे पास कॉल मत करियो
3: ठीक है मैं वापस कर रहा हूँ ठीक मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: भैया मेरे राखी के
5: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स
6: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
5: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
7: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200 जय गुरुदेव
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर. हेलो.
3: हाय.
2: व्हाट्स योर नेम?
3: शीतल.
2: हाय शीतल, हाउ आर यू?
3: गुड.
2: शीतल, हैप्पी राखी टू यू.
3: सेम टू यू.
2: क्या चल रहा है? राखी की तैयारी कैसे चल रही है?
3: बहुत अच्छे से चल रही है. राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले हैं मेरे भैया के घर फ्राइडे को ही. इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है. तो
2: ग्रेट. कौन कौन होने वाला है? उनके नाम बताइए. उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
3: मेरा भाई अभी स्टोर पे है. मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन. सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे हैं वो भी आने वाले हैं. दूसरी सिस्टर है उसके भी तीन बच्चे है, तो दो ब्रदर है बेटे है और एक बेटी है. हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं. और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: राखी के
1: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
2: कोई भी दिन त्योहार हो उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है. आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह न दे बात पक्की हुई करो मुंह मीठा. अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता. नया घर लो कराओ मुंह मीठा. नए घर में नया मेहमान आ जाए कराओ मुंह मीठा. ये मिठास खुशियों की है. ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे. ले आपको तो भूल ही गए. इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा.
3: नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक timeless diamond में. This Rakhi, get unlimited offers at RK Jewels. Best quality, best price.
12: देसी खाना,
13: देसी शॉपिंग,
12: देसी कल्चर
13: और देसी एंटरटेनमेंट
12: बस एक ही डेस्टिनेशन
13: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल.
14: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org.
15: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार.
16: अब
18: मिर्ची का
19: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और आप सुनने वाले हो आज का राशि जोन।
2: मिर्ची राशि जोन
1: इट इज, यानी कि मेष राशि, वर्क रूटीन में आज प्रोग्रेस दिखाई देगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए तो स्माइल रखो बरकरार, बिकॉज अपेरेंटली स्माइल इज फ्री। लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, जुपिटर और मून ऑप्टिमिज्म का बूस्ट दे रहे हैं, बस अनवांटेड थॉट्स को माइंड में परमानेंट एयरबीएनबी में मत डाल दो, रिलैक्स करो, ब्रीथ करो, मूव ऑन करो। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज थोड़ा सा कॉशन रखना, डिस्ट्रैक्शन छोटी मिस्टेक्स या वर्क आउट ला सकते हैं। मल्टीटास्किंग के चक्कर में 17 टैब्स ओपन मत कर देना ब्रेन में। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 21। कैंसर यानी कर्क राशि, यू आर अंडर अ लकी स्पेल ऑफ होप एंड वार्मथ, कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहेगी और एक सिंपल जेस्चर भी स्पेशल मेमोरी बन सकता है। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, करिश्मा फुल वॉल्यूम पे है, सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशन में सक्सेस मिल सकती है, बट अपने फेवरेट लोगों के लिए टाइम निकालना जरूरी है, सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी रिप्लाई करना इनफ नहीं होगा। लकी कलर इज मैरी गोल्ड, लकी नंबर इज 3। वगो यानी कन्या राशि, लर्निंग फोकस और कोलैबोरेशन के लिए आज का डे की है। सक्सेस आज लक से नहीं, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स और टाइमली डिसीजन से मिलेगी, सो ओवरथिंकिंग को मीटिंग से पोलाइटली बाहर भेजो। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 18। लीब्रो यानी कि तुला राशि, मेंटल स्ट्रेस फाइनली थोड़ा सा हल्का होगा, वार्म कन्वर्सेशंस एंड गुड कंपनी ब्रिंग जेन्युइन जॉय। आज किसी अपने के साथ चाय और गॉसिप साइंटिफिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली रिकमेंडेड। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, फ्रेंड्स की

योर स्पिरिट्स हाई एंड स्मार्ट आइडियाज को आज फाइनेंशियल गेन में टर्न करने का चांस है, स्पेशली थ्रू स्टेडी टीम वर्क. सोलो हीरो बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 27. सैजिटेरियस यानी धनु राशि फैमिली या किड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्ट्रेस मेल्ट करेगा. लेकिन प्लीज रशिंग से बचना, आज थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन वाइब है, मतलब कि स्टेयर्स को फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रैक मत समझना. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 8. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि मून एंड वीनस करियर और फाइनेंसेस को स्पॉटलाइट में ला रहे हैं. पर्सनल बिलोंगिंग्स संभाल के रखो और इम्पल्सिव शॉपिंग से बचो. सेल देखकर वॉलेट को आई हैंडल दिस मत बोल देना. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 16. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि मून एंड प्लूटो इमोशंस को इंटेंस बना सकते हैं, स्पेशली अराउंड वन बिग मिशन. स्टे ऑप्टिमिस्टिक, सरप्राइज इन्विटेशंस कुड बी कमिंग योर वे. बस इनवाइट को एक्सेप्ट करने से पहले लोकेशन जरूर चेक कर लेना. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 24. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस यानी कि मीन राशि. फाइनेंशियल गेन्स का आउटलुक स्ट्रांग है, लेकिन प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन में कॉशन बनाए रखो. लव में ट्रस्ट ग्रो करेगा, बस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को म्यूट कर देना. हर बात का कोर्ट रूम हियरिंग जरूरी नहीं होता. लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 5. एंड दैट वाज योर राशि जोन फॉर टुडे. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. तेरी मम्मी की जय.

सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: अरे बादशाह,
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
6: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
5: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Priscilla, It's Hot.
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड जस्ट लाइक दैट अब मेरा रैप अप का टाइम शुरू हो चुका है. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी. लेकिन बिफोर आई लेट यू गो एंड बिफोर आई गो, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो बनता है यार. नारक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन, पूरा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर, रक्षा बंधन स्पेशल कॉन्टेस्ट है. अगर तुम जीतना चाहते हो नारक फूड्स की तरफ से अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स, तो पार्टिसिपेट करने के लिए फटाफट से व्हाट्सएप करो राखी RAKHI और उसे भेज दो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. या फिर तुम मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ऑक्ट्री रोड, जहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के. विजिट करो WiraniJewelers.com. एंड टू everyone सेलिब्रेटिंग ओनम, हैप्पी ओनम, मे योर डे बी फिल्ड विद हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, डिलिशियस फूड एंड अ प्रॉपर साध्या, और ऑब्वियसली वन extra serving of the payasam because calories don't count during festivals. Main hoon Priscilla signing off from Mirchi Mornings. Keep smiling, keep it desi, and remember, stay tuned and stay hot.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. This Rakhi, get unlimited.

0: Milchi.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Murga, murga. La vieja la murga. Milchi, murga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
2: जी बताइए,
3: नाम क्या है? संतोष. संतोष.
2: हाँ

0: संतोष।
1: संतोष। सो क्या चल रहा है
0: आप
1: अभी?
0: क्या
1: आपको
0: करते हैं?
1: डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
0: नहीं, कोई बात
1: तो अभी ना
0: नहीं,
1: मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए, मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
0: बताइए। संतोष क्या करता है, व्हाट डू यू डू?
1: आई एम आई एम एंथ्रोपोर नहीं, आई एम एंथ आई एम एंथ्रोनोपोनर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एम्प्र एम्प्रतो एम्प एंथ्रोपोनो एंथ दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। अंशिका दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: भैया मेरे राखी के।
4: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: भैया मेरे राखी के
2: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेलर्स।
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।

बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: yes, yes. 써요 이렇게.
1: Yes, you are the best. You're the best. You're the best. You're the best.
0: Yeah.
2: 우라 जर्सी जानता है यहां के लोगों में टैलेंट है अनेक.
3: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
3: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
4: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet.

0: beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vid bala burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: ये कमलेश जी।
1: हाँ जी कौन?
2: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी

0: ने, लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
0: नहीं, देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का किला, उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
1: अरे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं।
0: देखिए मैंने हमेशा कब लिया आपसे? नहीं हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
0: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर किसी पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
0: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
0: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
2: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time to 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: yes,
2: with us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
2: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead
1: no,
2: with this?
1: No, not an issue, not an issue. 750 only?
2: Yes, sir, absolutely.
0: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
3: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: It's hot.
3: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
8: कोई भी दिन त्योहार हो, उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है। आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह न दे बात पक्की हुई, करो मुंह मीठा। अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो, कराओ मुंह मीठा। नए घर में नया मेहमान आ जाए, कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले आपको तो भूल ही गए। इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
9: नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
10: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
11: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
0: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: जयदीप।
3: हाँ जी।
4: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
3: हाँ जी।
4: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
3: मतलब
4: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
3: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
4: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
3: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे।
4: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
3: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
4: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है।
3: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की।
4: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
3: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
4: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
3: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी। अच्छा, तो खुलेगा।
4: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खोली नहीं रही।
3: तो कहाँ पे है तू?
4: बैंक में।
3: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
4: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
3: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
4: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
3: अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
4: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: भैया मेरे राखी के।
6: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: फूड?
8: यस।
6: शॉपिंग?
8: यस।
6: एंटरटेनमेंट?
8: डबल यस।
6: और हेल्थ फेयर?
8: ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही जगह, इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्ण मंदिर मॉर्गनविल।
9: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1300.

0: 444.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, ओ सॉरी, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया, अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: मैं

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels. Inefficient.
3: Very complex.
4: Clumsy hoy.
5: Confusion hi confusion.
6: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
9: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
10: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
16: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहाँ पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
9: Tera kya hoga Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
9: Ab mirchi kha.
11: Radio Mirchi. It's hot.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहाँ के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे. इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
3: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
4: संतोष। संतोष
3: संतोष
4: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
3: नहीं कोई बात
4: नहीं। तो अभी मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
3: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
4: I am दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: भैया मेरे राखी के।
7: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
8: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
9: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
12: सिमरन तू कार चढ़ के किधर जा सक रही है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेरे को टाइम नहीं दे सकया।
13: नहीं राज, अपने विच पहला वर्कआउट कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए। कुछ है जो इन सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ की
12: नानक रसमलाई? हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साढ़े व्याह तो पहला सी।
13: राज
12: सिमरन
14: नानक ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
15: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जींस पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब की आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस। बस वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
4: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: भैया मेरे राखी के
6: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
9: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
6: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
6: एक ही होता है
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

0: रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
4: मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं. इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है. हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है. वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर. तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन. सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, ज़ारा खान स्केल्स का गाना. गाने का नाम है मूव बॉडी. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर करार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद शान एंड दीदार कौर की आवाज में उदिपन शर्मा कम म्यूजिक, श्लोक लाल के लिरिक्स. गाने का नाम है दिलदारा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 10.

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं, वी कैन इमेजिन हिम स्माइलिंग, कि ये गाना गाते हुए कैसा स्माइल कर रहे होंगे. मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ. दीदार कौर एंड शान की आवाज में, दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो मुझे. कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली बिलीव जो गाना हमें पसंद आने वाला होता है ना, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है. कब कैसे सुनना है, हम कौन सा अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि आज मैं वो गाना जाके सुनूंगी और मुझे वो गाना अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता है. वी जस्ट स्टंबल अपॉन दैट सॉन्ग. मे बी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो. आप किसी कैफे में है और वहां वो गाना सुना हो. इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स. एंड देन रिसेंटली इट्स ऑल अबाउट ओटीटी शोज फॉर मी. आई रिमेम्बर मैंने नेटफ्लिक्स की एक ओटीटी सीरीज पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुन लिया सुना था, एंड आई लव द सॉन्ग. बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है. देन लास्ट ईयर मिस मैश का, इट्स इनक्रेडिबल दैट हमें अब ओरिजिनल म्यूजिक मिल रहा है फ्रॉम ओटीटी शोज. इश्क है फ्रॉम मिस मैश इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स. ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई. और काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स ऑल्सो फ्रॉम अ ओटीटी शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन. मुसाफिर कैफे का गाना है. आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है. मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है मैं देखूंगी. दो लोग पहाड़ों में, छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है. एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते, उसका नाम है काफी है ना. ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है. दैट अल्टीमेटली जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, या हाउ डू वी वांट टू फील लव्ड, कि किसी के लिए हमारी प्रेजेंस बस इनफ है, दैट काफी है ना. अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनीता गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश. शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम. उनकी कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है काफी है ना. नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: इट्स हॉट
2: मिर्ची
3: इसका बना उसका बना सबका बना
4: बना
3: मुर्गा मुर्गा नफियत वाला मुर्गा
4: मिर्ची मुर्गा।
5: हेलो
6: ये कमलेश जी।
5: हाँ जी कौन?
6: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
5: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
6: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
5: अरे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं।
6: देखिए मैंने हमेशा कब लिया आपसे? नहीं हमने कब लिया आपसे?
5: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
6: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
5: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
6: आप नहीं दे रहे फिर?
5: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
6: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
7: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
5: yes,
7: with us?
5: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
7: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
6: हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम घेरे में बढ़ गई।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
8: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
10: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
11: I am not going to bed with you ever again.
10: But why? What did I do?
11: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
10: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
11: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
10: Yes, come soon. Honey!
11: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
12: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
13: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
12: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

0: जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, the entire generation felt it together. फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, दिस सॉन्ग तारे इज माय फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना संजू राठौड़ का बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On
0: मिर्ची पर. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनेगा. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanega. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. गाने सजेस्ट करती हूँ, बातें बताती हूँ, कोई आपको बातें शेयर करनी हो बिंदास आके हिट मी अप. इट्स टाइम टू पुट अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग जो अभी टॉप 10 गानों में एंट्री नहीं मारा है, पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, डेफिनेटली इट विल मेक इट द काउंटडाउन. आज के स्पॉटलाइट का गाना इज बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट ऑफ दिस काउंटडाउन ऑफ इंडस्ट्री टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट बंजारे. उनका नया नवेला गाना आया है बरसात. द सॉन्ग कैप्चर्स दैट फीलिंग कि जब आपका ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, दैट हर्ट्स ऑब्वियसली. बट पता है उससे भी ज्यादा बुरा क्या लगता है? व्हेन वी रियलाइज कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है. वो मूव

ऑन कर चुका है. ये गाना एग्जैक्टली वहीं पर है. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द सॉन्ग एंड वी लिसन टू द सॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट बंजारे, जिनका गाना बैरन मेरा और आपका दोनों का फेवरेट है. ये पूरा गाना आगे काउंटडाउन में फीचर होने वाला है. बट लेट्स टॉक अबाउट दीज आर्टिस्ट. इट्स अ ब्रदर डुओ कॉल्ड सुमित एंड अनुज, जो कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं, जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक के टूवर्ड सबकी सोच बदल दी. रिच सॉन्ग राइटिंग, वेरी फोक स्टोरी टेलिंग का उनका अंदाज है एंड गानों को इतना होलिस्टिक बनाते हैं दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स द इमोशन जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. एंड सेम वही बात बरसात. इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, जो एक बंदी फील कर रही है जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा. द सॉन्ग गोज थ्रू फोर स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल. फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन. फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहां वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है. वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो. एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बंजारे आर बैक एट इट अगेन, उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात, रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग right next for you on our special Gaana Spotlight. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Enjoy.

0: कितने मेरी गॉड डैम, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है. गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में. राघव कौशिक का ही म्यूजिक. गाने का नाम है दरमिया. दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: Number 5.

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
7: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: No!
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
0: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
12: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
13: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
14: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
15: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
16: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Listener mein back to back gana sunega.
3: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey.

0: also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: गाना इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
4: नंबर 4.

0: You cannot not groove to this song. Anish Sarkar, Hruday Ka Gaana, Gaane Ka Naam Hai, Udi Udi, 11 hafton se is countdown par barkarar this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaane Ka Saath. On Mirchi.
0: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Mera handle is at RJ Kanika. The show is all about the hottest pop music of the week. And sometimes, jo gaane hame achhe lagne hote hain na, hum unhe dhoondne nahi nikle hote hain. Wo bas hamare raaste aa jaate hain. Aise maine pichle hafte ek gaana suna called Baavre. It's one of those songs जिसको सुनते ही मैंने अपने चार दोस्तों को बोला कि यार ये गाना सुन, बहुत अच्छा लगेगा. तो I'm going to play that song for you, which is basically about one-sided love. And इतने poetic way में इन्होंने one-sided love के बारे में बात करी है. You know, वो चांद है, चांद के आसपास एक रोशनी है जो ना उस चांद को छू पाती है ना उसे छोड़ के जा पाती है, बस वो है. उस रोशनी के जरिए यहाँ पर one-sided love के बारे में बात हुई है. Honestly, गानों में अच्छा साउंड करता है, आई होप किसी को कभी ना हो. बट प्लॉट ट्विस्ट ये है दैट इस गाने में फीलिंग गहरी है, सोच बहुत गहरी है, बट गाना बिल्कुल भारी नहीं है. इट्स अ ब्रीजी पॉप सॉन्ग, बहुत मेलोडिक रैप है. विकेट सनी ने इसे ऐसे लिखा है कि दर्द छुपता नहीं है पर गाने की फीलिंग आप पर बोझ की तरह भी नहीं आती है. इट्स लाइक अ फील गुड कंपेनियन एंड यू आर एंजॉयिंग इट थोरली एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग. तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है बावरे बाय ऋषि रॉय एंड विकेट सनी स्टारिंग कशिश रत्नानी. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

That was a song called Bavare by Wicked Sunny and Rishi Roy. One of those songs, मुझे पता है अब आप सुन के दो दोस्त को recommend करोगे कि इसको जरूर सुनना. At RJ Kanik on Instagram पर आओ, ऐसे कोई गाने हैं you want me to play next week, हमसे आके share करो. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. 21 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. गाने का नाम है शीशा, मिटर और की composition उन्हीं की आवाज, also featuring स्वरा वर्मा. पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके शीशा is playing right next for you on Gaana. Number 3. You're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: It's hot. इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप. शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. हफ्ते के टॉप 10 पॉप गाने हम आपके लिए लाते हैं. कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर @RJKanika. कोई गाना बताना हो, कोई सजेशन हो, बिंदास आके हिट मी अप. कोई सवाल है, बिल्कुल वी वेलकम इट @RJKanika पर बताओ. मैं और मेरे प्रोड्यूसर अश्काय, वी टेक योर सजेशन रिकमेंडेशन वेरी वेरी सीरियसली. इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we are going to feature this week is
3: Teri Deewani.
2: गाने का नाम है तेरी दीवानी, कैलाश खेर की आवाज में बाय हिज बैंड कॉल्ड कैलासा. साल था 2000 एंड कैलाश खेर की आवाज वाज द मोस्ट बुलंद आवाज ऑफ दैट ईयर. अब इतनी पुरानी बात लगती है दैट आई वांट टू रियली पिक माय ब्रेन एंड थिंक दैट मैंने क्या सोचा था जब मैंने सबसे पहली बार कैलाश खेर की आवाज सुनी थी, बिकॉज इट साउंड सो अर्दी रॉ. कुछ कच्ची मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज है उनकी एंड दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर. इस गाने की ब्यूटी मुझे ये लगती है दैट हर किसी के लिए तेरी दीवानी गाने का मतलब अलग है. किसी के लिए इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इश्क वाला, प्यार मोहब्बत वाला, दैट आई एम ऑल अबाउट यू बेब. पर किसी के लिए ये गाना एक इबादत के जैसे है, अ डिवोशनल सॉन्ग. देन देयर आर आल्सो पीपल जिनके लिए एक सूफी गाने की तरह है, जहां

सकता है। ये आप अपने दिल टूटने पर भी सुन सकते हो और किसी दिन सुकून ढूंढने के लिए भी। शादी में एक रोमांटिक गाने की तरह भी चल सकता है एंड अकेले कमरे में आंखें बंद करके भी ये गाना अच्छा लगता है। बट व्हाट्स कॉमन अमंग्स ऑल दीज थिंग्स इज इस गाने की कॉम्पोजिशन, कैलाश खेर की आवाज एंड व्हाट इट मेक्स यू फील। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कैलाश खेर की आवाज में कैलाशा द बैंड का गाना दिस इज तेरी दीवानी ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

डूड, कैलाश खेर की आवाज में जो दर्द है इन तेरी दीवानी, वो दर्द सीधा कलेजे पे लगता है, दिल नहीं कलेजा। दैट वॉज तेरी दीवानी ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर। आओ 90s 2000s के वो गाने जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है हमसे आके शेयर करो। मैं और अशकाय आपके सारे गाने सारे रिकमेंडेशन को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस हफ्ते के काउंटडाउन में गाना नंबर 2 पर इज हर्ष नुस्सी का गाना साडी सुन। पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, आई स्वेयर आई एम नॉट इवन किडिंग, पांच भी नहीं, ये गाना पिछले हफ्ते से पूरे 7 पोजीशंस ऊपर उठ के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो ओनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बैरन। बंजारे दे आर्टिस्ट का गाना 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, हर्ष नुस्सी का साडी सुन ऑन नंबर 2, बंजारे का बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: ਤੇ ਬਿਨਾ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੌਖਾ
1: ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹਸਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾਗਣ ਜੀਵਨ ਡਸਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਕੁੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ
2: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
3: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
4: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: Pyari brides, kya dhoondh rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
6: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
5: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islin.
7: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
8: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
9: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
10: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
11: Tera kya hoga Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
11: Ab mirchi kha.
13: Radio Mirchi. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

Monkey Time. Wednesday vibes, that too, full on, Mirchi style. शाम शाम ताला सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका बुधवार की इस खूबसूरत शाम में। वैसे तो यार वेंसडे का फंडा ना बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा फिल्मी हो जाए, थोड़ा सा फंकी हो जाए और बिल्कुल भी बोरिंग ना हो जाए, क्योंकि यार इसीलिए तो कहते हैं इसे वेंसडे द हम डे। वैसे चलिए आज की जो खूबसूरत शाम है इसे बनाते हैं फुल ऑन पैसा वसूल विद बॉलीवुड गॉसिप, ढिनचैक गाने, फिल्मी फंडे और एक से बढ़कर एक फन फैक्ट्स के साथ। क्योंकि यार अगर आपने कॉफ़ी चाय लाटे या फिर देसी चाय उठा ली है तो स्टीयरिंग थोड़ा संभाल के, क्योंकि तड़कते फड़कते गाने बजने वाले हैं अगले पूरे 4 घंटे आपके लिए और होने वाला है मिर्ची मसालेदार और मेगा एंटरटेनिंग। तो चलिए शो शुरू करते हैं और आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट भी आते रहिए, सेंड मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Biscuit Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La fiesta la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष। संतोष
2: संतोष
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं नहीं कोई बात।
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए, मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू?
3: आई एम एंट्रोनोर नहीं दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पटाख।
5: भैया मेरे राखी के।
6: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
13: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
14: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
15: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।

0: एकदम क्वीन।
1: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, इज़िलिन।

वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो मिलके ही रहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत को भी थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी एमी विर्क का किस्मत ये गाना सुनती हूँ ना, एक पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती है। वो प्यार, वो इंतजार और वो थोड़ी सी कसक, और एमी विर्क की वो आवाज जो इमोशन को सीधा दिल तक पहुंचाती है। लेकिन इस बार एमी विर्क की कहानी सिर्फ स्क्रीन या प्लेलिस्ट तक नहीं रुकने वाली, क्योंकि शुक्रवार August 28th को एमी विर्क अपने यूनिटी टूर के साथ न्यू जर्सी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर इन कार्टरेट न्यू जर्सी, इट्स गोइंग टू बी एन अमित जेटली ऑफ सा यूएसए INC प्रेजेंटेशन। तो इवेंट का कैनवस बहुत ही ग्रैंड रहने वाला है, तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम sulekha.com या फिर saiusainc.com। और अब बारी आती है आपकी किस्मत की, क्योंकि मिर्ची लिसनर्स के पास कॉन्सर्ट की टिकट्स जीतने का मौका है। तो मुझे बताइए कि अगर एमी विर्क के कॉन्सर्ट में आपकी किस्मत खुल जाए तो वो कौन सा गाना होगा जो आप सबसे पहले लाइव सुनना चाहोगे। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम @mirchisiddhi SIDDHI टाइप कीजिए एमी विर्क और अपना जवाब, और कॉन्टेस्ट में एंटर हो जाओ, क्योंकि हो सकता है अगला डीएम मेरा हो और मैं कहूं कि बॉस किस्मत में एमी विर्क लाइव शो लिखा है। तो चलिए, अब किस्मत की बात हो ही रही है तो अगला गाना भी वही है, एमी विर्क का किस्मत। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: भैया मेरे राखी के
2: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेलर्स।
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
2: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and

0: Bridal couture to menswear and ready-to-wear. Discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
3: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं. आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है. खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर. सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Desi khana,
6: desi shopping,
5: desi culture
6: aur desi entertainment.
5: Bas ek hi destination.
6: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
7: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
8: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
9: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
8: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
10: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है.
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: डेट नाइट का एक्साइटमेंट ना दोस्तों रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद नहीं, थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और प्लान चाहे हफ्तों पहले बने हो या शाम को अचानक डिसाइड हुआ हो, रेडी होते वक्त मूड ना ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज हो ही जाता है. फेवरेट आउटफिट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, फेवरेट फ्रेग्रेंस और सबसे इम्पॉर्टेंट वो फीलिंग कि आज रूटीन से कुछ अलग होने वाला है. और ऑनेस्टली चाहे सालों पहले की रिलेशनशिप हो या नई नई डेटिंग, कभी कभी ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो एक सिंपल से डिनर को भी ना थोड़ा स्पेशल बना देते हैं. तो अगर आजकल आपके कैलेंडर में भी ऐसी कोई इवनिंग आ रही है तो उसे थोड़ा और ड्रेसअप करने का एक बहाना तनिष्क भी दे रहा है. तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स विद अप टू

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
4: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
3: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
4: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
3: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शमशानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार, ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताएं। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: श्याम शारदा, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम.
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स.
4: ओ चनती कुड़ी, ओ चनती कुड़ी.

एक ही आर्टिस्ट पहले आपको इमोशनल भी कर दे और अगले ही गाने में आपसे डांस भी करवा दे, यार ये तो सिर्फ लाइव इन कॉन्सर्ट में ही हो सकता है। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और एमी विर की प्लेलिस्ट खोलो ना तो मूड का रिमोट उनके हाथ में चला ही जाता है। फिर चाहे किस्मत जैसा गाना हो जिसमें दिल वाले एमी मिलते हैं, या फिर वंगदा नाप हो जिसमें एनर्जी ही बदल जाती है, या फिर उनकी पंजाबी फोक वाली टेक्स्चर आए तो यार गाने में एकदम देसी रंग भर जाते हैं। और इसीलिए लाइव इन कॉन्सर्ट का मजा ही अलग होता है। एक ही शाम में रोमांस भी, इमोशन भी और फुल पंजाबी सेलिब्रेशन भी। तो दोस्तों ऐसी शाम आपके लिए आ रही है शुक्रवार को यानी अगस्त 28 को विद एमी वर्क यूनिटी टूर 8:30 बजे से लेकर कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर में कार्टरेट न्यू जर्सी में। और दोस्तों इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन, मतलब इवेंट का कैनवस ग्रैंड ही होने वाला है। तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम saiusainc.com या फिर sulekha.com। और अब बारी आती है मिर्ची लिसनर्स के उस स्पेशल कॉन्टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टेस्ट बड़ा आसान सा है। आपको बताना है एमी विर्क का वो कौन सा गाना है जो आप उनसे लाइव सुनना चाहोगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो जल्दी से एमी विर्क टाइप कीजिए और मुझे डीएम कीजिए @rjmirchisiddhi, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जवाब दे सकते हो @9033647244। जल्दी से जवाब भेजो और हो सकता है वो गाना इस फ्राइडे आप स्क्रीन पर नहीं सामने स्टेज पर सुन रहे हो। तो चलिए थोड़ा पंजाबी तड़का हो जाए एमी विर्क का राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी.
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी.
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए हाँ,
3: तो नहीं है आपको? मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेगा.
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है.
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की.
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है,

0: ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा।
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा।
0: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। पांच खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में पांच लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ, हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
1: तो कहाँ पे है तू?
0: बैंक में।
1: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
0: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
0: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
0: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Rohit के साथ only on मिर्ची. It's hot. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
1: Oh, ये तो दुकान है बड़ी. पाजी, आप क्या लेने आए हो?
2: शुद्ध देसी घी.
1: लो पाजी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है.
2: घी टेस्ट के लिए थोड़ो खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं. मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो. वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा.
1: नानक घी पाजी.
2: नानक घी चाहिए यार. अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए. सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक.
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज. Comes the naan, the same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
7: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसी चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।
1: गुड इवनिंग म्यूचुअल लिसनर्स, योर फ्रेंड बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज, giving you mortgage rate updates during this drive time. Markets are quiet. It is seen that Fed more likely to hike rates before inflation data is out. Friends, before you fall in love with the house, let's make sure you will love the payments too. Before buying a home, you should feel exciting, not stressful. So as a loan officer, one of my biggest things that I tell my clients is, don't start with the house price. Start with a payment that fits comfortably into your life. It's easy to walk into a beautiful home, fall in love with the kitchen, the backyard, the neighborhood, and then realize afterward that the monthly payment is more than you are expecting. That's why I encourage buyers to talk to a lender early in the process, and we can look into your income, credit, down payment, taxes, insurance, and current interest rates, and help you understand what a realistic monthly payment could look like. And here's something really important. Just because you qualify for a certain amount doesn't mean you need to spend that amount. So before you start touring homes, get comfortable with your numbers, know your budget, know your estimated payment, and most importantly, make sure that payment allows you to enjoy the home you're buying. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Because the goal isn't just to help you buy a house, we also help you refinancing your existing home loan. So call us today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
2: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
3: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
2: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
3: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
4: जय गुरुदेव, अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सितंबर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: हर सीजन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और समर की पर्सनालिटी मुझे सबसे ज्यादा फिल्मी लगती है. शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और दिन लंबे होते हैं शाम में धीरे.

धीरे उतरती है और लगता ही नहीं कि घर जाने की कोई जल्दी है। पार्क्स में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई आइसक्रीम लेकर वॉक कर रहा होता है, कोई यार लॉन चेयर निकाल कर बस हवा एंजॉय कर रहा होता है। और मुझे ना समर की सबसे प्यारी बात ही यही लगती है कि ये सीज़न हमें घर से बाहर निकलने का बहाना दे ही देता है। कोई ग्रैंड प्लान की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी बस एक छोटी सी इवनिंग ड्राइव भी पूरे दिन का मूड चेंज कर देता है। तो आज अगर घर जाते वक्त थोड़ा लंबा रूट मिल जाए तो शायद शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं। और बताइए दोस्तों, समर की कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं लगता? आइसक्रीम, बारबेक्यू, लॉन्ग ड्राइव्स या सनसेट वॉक्स? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मेरा तो कोई भी सीजन एक प्यारे से गाने के बगैर कंप्लीट ही नहीं लगता। तो चलिए बजाते हैं वही गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed.

0: Miss India लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
2: ब्रॉट टू यू बाय दीप फूड्स. दीप फूड्स खाओ तो जानो.

मुझे तो बॉलीवुड की ये नई आदत बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, आजकल जब नई मूवीज रिलीज होती है ना, तो बॉलीवुड एक्साइटमेंट को थोड़ा थोड़ा करके सर्व करता है। कभी एक पोस्टर, कभी एक फर्स्ट लुक, कभी एक टीजर, और फिर आता है ट्रेलर। मतलब बॉलीवुड की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ही पता है ये लगती है कि कभी कभी फिल्म से ज्यादा मजा उसके इंतजार में करवाता है। बस एक पोस्टर आता है और व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं, एक लुक रिलीज होता है और सब डिटेक्टिव बन जाते हैं। कोई कहता है कि यार ये कैरेक्टर ना कुछ जरूर छुपा रहा है और भी कुछ मसालेदार होने वाला है, तो कोई म्यूजिक का वेट कर रहा होता है, कोई ट्रेलर का, और कोई सीधा रिलीज डेट कैलेंडर में मार्क कर चुका होता है। मतलब फिल्म आने से पहले ही उसके आसपास इतनी एक्साइटमेंट बन जाती है कि लगता है कि कहानी स्क्रीन पर शुरू होने से पहले ही ऑडियंस के दिमाग में शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ बॉलीवुड ही कर सकता है। मतलब 2 मिनट का ग्लिम्स और पूरा देश की इमेजिनेशन फुल स्पीड में दौड़ने लगती है। वैसे आप ही बताइए कि जब किसी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है, आप सबसे पहले किस चीज़ का वेट करते हो? उसके फर्स्ट लुक का, ट्रेलर का, या पहले गाने का? DM me on Instagram @RJMirchiSiddhi।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels. Sham Shandar,
1: let's go Nautanki, have a funky time. एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम ए इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी म्यूजिकल थाली, क्योंकि 6 अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम ए इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार 6 जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन

बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इन 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारे सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए, सलाम ए इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियां थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलाम ए इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलाम ए इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और तब तक सलाम ए इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए,
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चन्ना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue.
2: 750 only? Yes, sir, absolutely. No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghej mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot. This gold update is brought to you by Raj Jewels. Kingdom of Jewels, where tradition meets style. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels. Inefficient.
4: Very complex.
5: Clumsy.
6: Confusion.
0: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaaman ek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
0: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
0: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Kya banaye aaj? Shahi paneer banaye, kadai paneer banaye, matar paneer banaye ya fry paneer banaye? Agar aapke paas nanak paneer hai, to aap kuch bhi bana sakte hain. Aankhon mein chamak aur chehre pe noor, sirf beauty parlor jaane se nahi aata. उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

कभी कभी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए बहुत साल नहीं, बस एक डिसीजन काफी होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और हम अक्सर सोचते हैं कि यार नया करियर स्टार्ट करना मतलब लॉन्ग वेट, लॉन्ग प्रोसेस, पर हर जर्नी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। अगर आप हेल्थ केयर फील्ड का हिस्सा बनना चाहते हो तो शायद ये बिगिनिंग आपकी सोच से ज्यादा क्लोज हो, क्योंकि एज लेस एज 1 month ट्रेनिंग यू कैन नाउ बिकम अ फ्लेबोटमी टेक्नीशियन बाय जॉइनिंग एम्स एजुकेशन, क्योंकि प्रोग्राम्स ऑनलाइन और ऑन कैंपस दोनों जगह ऑफर्ड है। आज ही कॉल कीजिए 9082220002 या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu, क्योंकि क्या पता शायद हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपका करियर बनाने का सपना सिर्फ एक डिसीजन दूर हो। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: भैया मेरे राखी के
6: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please

0: visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
1: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
2: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
4: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit AIIMS education.edu.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: unlimited offers at RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब ज़माना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा एक एल्बम था 2007 का, सलामी इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलाम है, इस टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का, तेनू लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पर अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनू मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, तेनू लेके मैं जावांगा, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं, लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, DM मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनू लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट।

0: meaningful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
1: Bhai behan ka rishta hota hai priceless. To rakhi ki koi kimat kyun ho?
2: Celebrate Rakhi with Raj Bhog. Raj Bhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on rajbhog.com or visit your local grocery store.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
6: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलामी इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशन इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाबू जी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट। तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग, और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की। वैसे यार ये गाना इतना ज़्यादा प्यारा है तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम। तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है, टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलामे इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलामे इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक

खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो, पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में. लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए, यानी सेटअप करने के लिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक ना अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पीली ये गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में. और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामिक ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया. तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे, फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलाम इश्क 2007 की रिलीज. वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH, क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika? Ye, Anshika, aapka... ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं.
3: तो आज मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
2: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
3: डू? आई एम एंट एंट एक सेकंड.

0: Entrepreneur. I am entrepreneur. Nee. I am empotoner. Nee. I am emperor and empot entrepreneur and दुकान है मैडम कपड़े की अपनी दुकान है. Anjika, this is Naved. I'm calling from Radio Mitch. God bless you. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी. हंस क्या?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ. Only on मिर्ची. It's hot. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
1: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर in demand healthcare careers.
1: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
6: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग. राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Simran, tu car chhad ke kithe ja sakdi hai ta? I know Simran, meri galti hai, main tenu time nahi de sakya.
10: Nahi Raj, apne vich pehla warga hun kuch nahi reha. Sab kuch badal gaya. Tu badal gaya, tere dream badal gaye, tere preferences badal gaye. Kuch hai jo inne saalan vich nahi badlya? Hai kuch? Ki?
9: नानक रसमलाई. हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साढ़े व्याह तो पहला सी.
10: राज
9: सिमरन
11: नानक, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ.
12: नो
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.

कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है जो बजते ही शाम का मूड चेंज कर देता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और 2000 एरा का एक ऐसा ही टाइमलेस ट्रैक है कल हो ना हो। यार जैसे ही उसका सॉफ्ट पियानो इंट्रो शुरू होता है ना, सडनली सब कुछ थोड़ा सा स्लो लगने लगता है। ड्राइव हो, चाय हो, या बस विंडोज से बाहर देखना, यार इस गाने की खूबसूरती ही ये है कि ये लाउड नहीं है पर इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा डीप है। सिंपल सी मेलोडी है, सोलफुल सी आवाज है, वो भी सोनू निगम की, और वो लाइन जो याद दिलाती है कि हर दिन को ना थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसीलिए जब भी ये ट्रैक रेडियो पे आता है ना, लोग ऑटोमेटिकली वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो ना मूड बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी बताना कि कौन सा ऐसा बॉलीवुड का गाना है जो सुनते ही आपको भी वो पॉज और फील मोमेंट मिलता है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए कल हो ना हो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: भैया मेरे राखी के
2: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
6: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
1: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
0: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम

0: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और तुम मेरे ना हुए ना सही. ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है. मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है रश्मिका मदाना के थ्रू, एक आग भी है और एक आंसू भी. सचिन जिगर का म्यूज़िक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ. मज़े की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ वन टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था. वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टेंट RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI. और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: तो फिर जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
3: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
5: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
6: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
6: Shaadi shopping ka complete destination. Fashion Queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है, और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: मिर्ची रोशी
0: ओनली ऑन 92.7 FM. रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी. इट्स हॉट.